0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਸ, 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूबनगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे।

0: इसके बाद प्रधानमंत्री दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, 100.9 मेगाहर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत

उस परम पिता परमात्मा दे दरबार लगवा रहे हाजरी भक्ति संगीत दे प्रोग्राम आराधना दे नाल।

बढ़ते अनाचार और धर्म के प्रति अनास्था देखकर पृथ्वी भयभीत और व्याकुल हो गई। अंत में और कोई उपाय न देख पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वहां पहुंची जहां रावण से त्रस्त और उत्पीड़ित देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो कर उन्हें अपना हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने धरती को धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करने का उपदेश दिया।

0: चार बज के 2 मिनट ते साडी दूसरी सभा दे शुरू दे विच मुख खबरां तो बाद परिमल। इस दे विच अज तुसी कृत्रिम मेघा एवं हिंदी साहित्य बारे डॉक्टर नीलम सेठी, सोमनाथ शर्मा ते डॉक्टर पूनम महाजन होना तो गलबात सुनोगे। शाम 4:30 बजे असी तुहानू श्री दरबार साहिब अमृतसर ले चलांगे, जिथों तुसी शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे। शाम 5:30 बजे का समा रहेगा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार का। शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम च कम दियां गल्लां ते फलदार बूटियां दी देखभाल बारे डॉक्टर संदीप सिंह होनी दसंगे 90 साल आकाशवाणी दे नाल। ते इस दे नाल ही रूपक होएगा रोजा रसालू। और कल दे प्रोग्राम ते गीत संगीत भी होएगा। वगदे पानी प्रोग्राम दे विच कहानी होएगी संस्कृत दी ठक ठक संदीप कुमार होना दी। 8:00 बजे तुहाडी चिट्ठी मिली ते फिर रात 9:30 बजे नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर्स इंग्लिश दे विच, 10:00 बजे रविवासिया अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन। इस संजी साढ़े अज के प्रसारित होने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा सवेर दे 6:55 हो रहे ने। आओ सुनदे हां संस्कृत च समाचार।
1: इयं आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानंद झाः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रार्थं प्रतिष्ठते। सः बेंगलुरु नगरे आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य 45वीं वर्षपूर्तिम्, एतस्य संस्थापकस्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकरस्य 70वीं जन्मदिवसं च उपलक्ष्य प्रकल्पिते एकस्मिन् समारोहे सहभागं करिष्यति। श्रीमोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसरे नवनिर्मितस्य ध्यानमन्दिरस्य ध्यानकक्षस्य च उद्घाटनं करिष्यति। एतत् कार्यक्रमात् पूर्वं सः एकां सभां सम्बोधयिष्यति। समारोहात् अनन्तरं प्रधानमन्त्री हैदराबादे प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां अनेकासां विकासपरियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। श्रीमोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां

0: सप्तषष्ट्यधिकशतसङ्ख्याके राष्ट्रिय राजमार्गे चतुर्भागपरक मार्ग निर्माणस्य आधारशिलाम् अपि स्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री वारंगले पीएम मित्रा पार्क इत्येतत् उद्यानम् अपि उद्घाटयिष्यति। अपि च सः हैदराबादे अत्याधुनिकं कर्करोगपरम् एकं चिकित्सालयम् अपि लोकाय अर्पयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रानन्तरम् अद्य गुजरातम् अपि गमिष्यति। द्विदिवसीय यात्रायाः प्रथमे दिने अद्य सः जामनगरं प्राप्नोति। तदनन्तरं द्वितीये दिने अर्थात् श्वः सः सोमनाथ मन्दिरस्य जीर्णोद्धारस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते सोमनाथामृतमहोत्सवे सहभागं करिष्यति। प्रधानमन्त्री अनेकेषु धार्मिकेषु सांस्कृतिकेषु च कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। सुवेन्दुः अधिकारी ह्यः पश्चिमबङ्गालस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिमबङ्गाले भाजपेति दलस्य प्रथमं प्रशासनं संघटितम्। कोलकातायां ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले आयोजिते भव्ये समारोहे राज्यपालेन आर एन रविणा श्री सुवेन्दुः अधिकारी पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितः। तेन सह अन्ये पञ्चमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री केन्द्रीय गृहमन्त्री रक्षामन्त्री भाजपादलाध्यक्षः अनेके मुख्यमन्त्रिणः मन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। टीवीके दलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडुराज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन अद्य प्रातः 10 वादने शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये 9 मन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे 20-उत्तर-100 विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुन्दा स्थले अद्य रजत जयन्ती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीयर्तुविभागेन आगामिषु 2-3 दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचण्डवृष्टेः सम्भावना प्रकाशिता। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, इण्डियन् प्रीमियर् लीग् क्रिकेट् स्पर्धामालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदौ पणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30-200 धावनांकानां विजयलक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 7 बजे ने, जी हाँ, वेला हो गया है। हुन मुख खबरां दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटका अते तेलंगाना दा दौरा करनगे। भारतीय जनता पार्टी दे नेता सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिमी बंगाल दे नवे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुक ली है। तमिलनाडु विच सीजे विजय की अगवाई वाली टीवीके ने दावा किया है कि उनकी पार्टी नू राज विच नवी सरकार बनाने दे लई 120 विधायकों का समर्थन मिल गया है। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने पंजाब दे उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा नू मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी मामले दे विच चंडीगढ़ तो गिरफ्तार किया है। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 दे जेतुआं दा ऐलान कर दिता है।

समय दी गिणती नहीं है, ये भरोसा प्यार ते लोकां दे नाल जुड़िया होया रिश्ता है। तुहाडे सारिया दे नाल जुड़े हुए रिश्ते दी कहानी जिहड़ी है वह बयान करदा है ये सफ़र, खुशियां दा, चावां दा, ते बहुत ही आशावां दा। ते फिर ऐसे मीत, ऐसे हम सफ़र दे नाल प्रोग्राम दी शुरुआत लो जी इन्हां गल्लां बातां दे नाल। ते ये खूबसूरत गीत जिहड़ा वह भी कहिंदा है कि जुड़े रहना तुसी साडे नाल।

इसलिए उसने मां दे दिती। ये क्या जाता है ना, तो बिल्कुल सही क्या जाता है, जिथे मां उथे बच्चे का सुकून। सो ममता जिहड़ी है ना, वह परमात्मा अपने आप ही जिवें कुड़ियां दी औरतां दे दिल विच रख दिंदा है। ते सही ममता वो जिहड़ी अपने बच्चे नाल ते प्यार करे पर बाकी सारे बच्चों के लिए भी अपने दिल विच प्यार रखे। ते मां तो कोई ओला नहीं, मां दे अगे हर डर, हर औगुण, हर नफा, हर नुकसान जिहड़ा है वो असी बयान कर सकते हैं। ते मां जो तो सीध दिंदी है ना, फिर जिंदगी सवर जाती है।

बिल्कुल जी माँ, ते अज दा दिन मदर्स डे दे नाम अपनी माँ दे नाल बिताया जाएगा। अज दा दिन ते बिताना भी चाहिए। वैसे ते हर दिन

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: लू जी, इन्हें सुनी है तो बाद एक बार फिर तो लेके हाजिर हो गए हैं प्रोग्राम सोनी सवेर। ते प्रोग्राम सोनी सवेर दे विच हुन गल करते हैं उस हफ्ते दी जिहड़ा असी 8 तरीक तो मना रहे हैं। जी हाँ, UN ग्लोब रोड सेफ्टी वीक 2026 यानी कि सड़क सुरक्षा दे प्रति जागरूक करन वाला ये महीना, जिहड़ा कहिंदा है कि बिल्कुल असी जागरूक होना है ते होरां नूं भी करना है। दूजियां नूं भी ये कहना है कि सड़क दे नियमां दी पालना जरूर करो, समझाउणा है ते बिल्कुल रोज़ाना दे जिहड़े हादसे हुंदे ने ना ओह भी कह रहे हुंदे ने कि हुण तां समझ जाइए। संयुक्त राष्ट्र विश्व सेहत संस्थावां वल्लों मनाया जाण वाला UN ग्लोब रोड सेफ्टी वीक दुनिया भर दे विच सड़क सुरक्षा प्रति जागरूक फैलाउण वाला दिन है, हफ्ता है। 2026 विच ये मुहिम लोगों नूं सुरक्षित ड्राइविंग, ट्रैफिक नियमों की पालना ते पैदल यात्रियों की सुरक्षा बारे जागरूक कर रही है। ये मुहिम का मकसद यही है कि सड़क हादसों को घटाया जाए, नौजवान अते बच्चों की सुरक्षा की जाए, हैलमेट ते सीट बैल्ट की जिहड़ी वरतों है वो ज़्यादा तो ज़्यादा सारे करिए, पैदल ते साइकल यात्रियों नूं सुरक्षित रखिए। दुनिया भर के हर साल लखां लोगों की मौत जिहड़ी सड़क हादसों के नाल हुंदी है ते हफ्ता जिहड़ा सानूं याद करवाउंदा है कि सुरक्षा कोई चोण नहीं है, सगों हर जिंदगी की जरूरत है ते जिंदगी बहुत कीमती है, इसलिए सड़क ते रफ्तार दे नाल नहीं सगो समझदारी दे नाल चलना है, ड्राइविंग दे नियमां दा पालन करना है। ते हाँ, सड़क ते कोई कुताही नहीं वरतनी। एक छोटी जिही सावधानी जिहड़ी हुंदी है वो कईयां दे घर बचा सकती है ते एक छोटी जिही अणगहिली घरां नूं खत्म भी कर सकती है। सो ट्रैफिक नियमों की पालना करिए, तेज़ रफ्तार तो बचिए ते दूजियां दी सुरक्षा दा भी ध्यान रखिए, तां कई जिंदगियां जिहड़ियां ने वह बच जाणगियां। सो जिम्मेवारी वाली सोच नूं अपनाउण दे लई प्रेरित कर रहा है ये हफ्ता ते जिम्मेवारी साथ साथ चलन दे विच संभल के चलन दे विच ही है।

विभाग ने किया है कि ड्राई रहने वाला है, जी हाँ खुश्क रहने वाला है, ते 13 मई नू बरसात दे आसार ने। सोच थोड़ी जी राहत जिहड़ी है उदो पएगी। अज 10 मई नू आसमान ते साफ रहेगा ते वध तों वध तापमान जिहड़ा है ओह 36 तों 38 डिग्री तक होण वाला है। 24 तों 25 घट तों घट तापमान जिहड़ा है उहदा अनुमान लगाया जा रहा है। 11 मई नू वी आकाश जिहड़ा है अंशिक तौर ते बदल छाणगे कुछ देर दे लई, पर ज़्यादातर जिहड़ा तापमान है ओह 38 डिग्री सैलसीयस तक रहण वाला है। ते 12 ते 13 तरीक नू अंदेशा किया जा रहा है कि इन्हां 2 दिनां दे विच मौसम जिहड़ा ओह बदलेगा, बदल छाणगे या 1-2 जिहड़े बारिश दे नज़ारे वी ले जाणगे। गरज दे नाल कई जगह ते बुछार वी हो सकदी है ते न्यूनतम तापमान जिहड़ा ओह 24 डिग्री तक आ जाएगा ते वध तों वध तापमान 35 तों 37 डिग्री दे विच रहेगा। ते 14 मई नू वी जिहड़ा मौसम है ओह साफ रहेगा ते वध तों वध तापमान 37 डिग्री तक जाण वाला है ते घट तों घट 24 डिग्री रहण दा जिहड़ा अनुमान है ओह लगाया जा रहा है। सो इसी मौसम विभाग तों मिली मौसम दे बारे जानकारी। ते हाँ प्रोग्राम दा जिहड़ा मौसम है ना ओह बड़ा खुशगवार है, जिहदे विच आशावां वी ने, जिहदे विच खुशियां वी ने, ते बिल्कुल गीत ते है ही ने साडे कोल तुहाडे लई। आओ सुणदे हां फिर केके दी आवाज़ च ये वाला गीत।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ। ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।

0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोयस ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियाद आदि ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिल का वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
3: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस VC के वामपंथी दलों और IUML के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
4: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी

0: इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
4: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
5: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम

0: बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त, अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की यह खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कमस्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Center operationalizes 4 labor codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration test of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. More from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir or Meditation Hall at the premises. He will also launch the year-long projects of the foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to Art of Living International Centre, the Prime Minister will address the BJP leaders and workers at HAL Airport. The leader of the opposition Karnataka Legislative Assembly, R. Ashoka, has informed that the Prime Minister will be honoured with Mysore Peta and silk shawl for the party's recent electoral victory, and around 15,000 people will attend this.

उन पेश ने मसीही भजन। जैमिल होना दी आवाज़ दे विच आओ सुनते हैं ये मसीही भजन।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकां दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: पेश नी मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटका अते तेलंगाना दे दौरे ते होणगे। अज ओ हैदराबाद विच लगभग 4,400 करोड़ रुपए दे वक-वक विकास प्रोजेक्टां दा उद्घाटन करनगे अते नींह पत्थर रखणगे। तमिलनाडु विच TVK पार्टी दे मुखी सी जोसेफ विजे अज राज दे नवे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकणगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी नूं पौंडेचेरी दा मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। रक्षा खोज अते विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद विच स्क्रैमजेट कंबस्टर दी सफलता पूर्वक परख दे नाल हाइप्रोसैनिक मिसाइल विकास प्रोग्राम विच वड्डी सफलता हासिल कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह अज नवी दिल्ली विच एक उच्च पदरी मीटिंग च संभावित हड़ा अते लू नाल नजिठण दीआं तैयारियां दी समीक्षा करनगे। केंद्र सरकार ने किरत कोड लई नवे दिशा निर्देश जारी किते ने। एक केंद्रीय मंत्रालय विभागा खुदमुख्तार संस्थावां अते केंद्रीय जनतक खेतरां दे अदारियां विच काम करदे आउटसोर्स अते कंट्रैक्ट वर्करां दी सुरक्षा नूं मजबूत करनगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने पंजाब दे उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा नूं मनी लॉन्ड्री मामले दे विच चंडीगढ़ तों गिरफ्तार कीता है। गैंगस्टरां ते वार इस मुहिम तहत 109वें दिन कल पंजाब पुलिस ने 336 थावां ते छापे मारन दौरान 221 व्यक्तियां नूं 17 हथियारां समेत गिरफ्तार कीता है।

0: बिल्कुल जी, जिंदगी च जरूरत बनी भी रहनी चाहिए है। ते ये जरूरत जड़ी होंदी है ना, वो काट दी जननी भी होंदी है। ते जननी तो याद अज दा दिन भी आंदा है, क्योंकि अज दा दिन कहंदा है कि अज ये दिन मां नू समर्पित जरूर करिए। बिल्कुल, क्योंकि मां जिसने सानू जीवन दिता ते जिसने सानू इस लायक बनाया कि असी इस जीवन दियां सारियां खुशियां गमियां नू सहार सकते हैं, आनंद माण सकते हैं। सो एक सलाम उनू ते बन दईए। ते फिर थोड़े दे विच थोड़ा रलाइए ते बहुत सारा प्यार जड़ा वंडिए दईए। ते हाँ, सारे ही दिनां नू प्यार दे नाल मनाइए। खैर, प्रोग्राम दे विच साडे कोल शामिल होण जा रहे ने साडे अज दे पहले कॉलर, करिए फिर स्वागत। हैलो
1: हैलो
0: हैलो जी, नमस्कार।
1: सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, कृपा करके अपने रेडियो सेट तो दूर हो जो।
1: मैम आवाज बहुत घट आई थोड़ी।
0: आवाज घट आ रही है पर तुहाडी आवाज सानू बिल्कुल आ रही है। तुसी अपना खूबसूरत।
1: हाँ जी, रेडियो दे नाल काम चलाई दा।
0: अपना शुभ नाम दस दियो ते अपना गीत दस दियो।
1: मैम गुरमुख पिंड परजियां कला शाहकोट तहसील तो बोल रहा हूं
0: जी। गीत दसो जी, केड़ा सुनोगे?
1: मैंने माँ को देखा, मैं आपका प्यार नहीं देखा, लता मंगेशकर दा गाया। मैम
0: जी बिल्कुल, यही गीत पहुंच रहे हैं। फोन करने के लिए शुक्रिया।

0: लो जी, प्रोग्राम चल रहा है। हैलो फरमाइश। तो प्रोग्राम दे विच अगली हैलो आओ जान दिया कि ना दिए। नमस्कार जी।
1: हेलो, सत श्री अकाल मैडम जी।
0: सत श्री अकाल जी।
1: मैडम जी, मैं राजू बोलदा जी, चंडीगढ़ तो।
0: वाह जी वाह, राजू जी स्वागत है प्रोग्राम दे विच।
1: आम फिल्म दा गीत सुनना है जी।
0: जी बिल्कुल सुनावांगे। तो प्रोग्राम फिर सुनते रहते हो आकाशवाणी दी है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अक्सर फोन कॉल भी लग जाती है, तो जिन्हें दी नहीं लगती राजू जी, उन्हें लिए कोई सुझाव है?
1: कोशिश करनी पैंदी है मैडम जी लगातार।
0: ओए होए, ठीक
1: हाँ
0: है
1: जी,
0: जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, कोशिशां
1: हाँ
0: कामयाब
1: जी।
0: होंदिया ने, है ना?
1: कई बार घंटा घंटा असीं मिलांदे रहिंदे आ जी, लगदा नहीं।
0: ओहो, ठीक है, कोशिश करनी है
1: हाँ
0: ते आस नहीं
1: जी,
0: छड़नी, है ना? ठीक है जी, नाम
1: ठीक है
0: फिल्म
1: जी,
0: दा गीत सुनाने हैं। प्रोग्राम दे विच फोन कीता उस दे लई शुक्रगुजार।
1: धन्यवाद।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: ते सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त ऊपर वाला।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी। हेलो फरमाइश, ते आओ प्रोग्राम दे विच गल कर दिया साड़ी अगली कॉलर साहब नाल। हेलो,
1: हेलो माधुमी, नमस्कार। सुखबीर
0: नमस्कार जी।
1: सिंह शाजड़ी बोलता जी, संगरूर तो।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच।
1: शुक्रिया मानो जी, बहुत वधिया प्रोग्राम पेश कर रहे हो। मदर डे दी तुहानू मुबारकां जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत मुबारक
1: हाँ
0: ते
1: जी,
0: अज
1: बाकी
0: दा
1: तकनीकी
0: सुनाम
1: वीरां
0: मनाओ।
1: नू बेनती है, आवाज जमी नहीं आ रही मैडम जी, वाली आवाज ठीक करनी जी।
0: पर मैनू तो लगता अपनी आवाज बिल्कुल सही जा रही है हुन।
1: ना फोन च नहीं मैडम जी आ रही, मैं रेडियो थ्रू गल कर रहे। हाँ
0: ओए होए,
1: जी
0: रेडियो
1: हाँ
0: थ्रू
1: हाँ
0: बहुत साफ गल हो रही है अपनी,
1: जी,
0: बिल्कुल साफ गल हो रही है। मैं क्या
1: अच्छा, चलो ठीक है जी।
0: ठीक है जी। गीत कड़ा सुना दिए फिर।
1: बाकी मैंने भी जलंधर रेडियो साडा फेवरेट चैनल है जी, बहुत वधिया चैनल है, बहुत वधिया गाने चलते ने इत्थों। गाना दा दो जी, लाडला मूवी दा।
0: ठीक है जी, ठीक है जी। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया मैडम जी।
0: तुहाड़ा गीत जरूर सुनावांगे पारी कंतराल तो बाद।
1: अच्छा ठीक है जी, ठीक है।
0: जी बिल्कुल जी, गीतां दी लड़ी जड़ी चल रही है वो होर भी अगे कंटिन्यू जरूर होएगी। पर उस तो पहला प्रोग्राम दे विच जिहड़ी जरूरी सुनी ही ताड़ी तक पहुँचाने ने वो पहुँचा दिने आ, ते फिर आके सुनाने आ तुहानू तुहाड़ी पसंद दे होर गीत भी।
2: सारे लिए समाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: हुण तक 8,85,00,000 तो वध लाभपात्री इस योजना नाल जुड़ चुके हैं। जेकर तुहाडी उम्र भी 18 तो 40 साल दे विचकार है तां महीनावार अटल पेंशन समेत योजना दे 3 गारंटी शुदा लाभां बारे जानकारी लई अपनी बैंक शाखा नाल संपर्क करो।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: मलेका सिरसा तो, राम स्वरूप लुहानी वाला, परमजीत पम्मी, पूजा ते परिवार, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल पप्पी नवनीत ते सोनू भाटिया। ए सी प्रोग्राम तमक जलंधर पेंदी। कल ठीक है प्रोग्राम लेके आवांगे तेने 11:05 ते। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 12 बजे ने सुन रहे हैं समाचार हिंदी विच।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय तमिलनाटर முதலமைச்சர் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவு கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1,200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच

मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई छठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨਗੇ ਬਾਲ ਜਗਤ।

0: जय हिंद। चन सितारे बड़े प्यारे, बदल रुख प्रभात, अपने आप ने बदली जांदे सुंदर दिन ते रात। और जदों सुंदर दिन ते रात बदलदे ने और एतवार दी खूबसूरत जी दोपहर आउंदी है ते बच्चियां दा मनपसंद प्रोग्राम लैके आउंदी है उन्हां दे रेडियो सैट उपर। और हुण सुखदीप और गुरप्रीत दी करो जी कबूल तुसी हाजरी इस बच्चियां दे प्रोग्राम बाल जगत दे विच।
1: प्रोग्राम बाल जगत दे विच हमेशा दी तरह इस बार भी सुमेल लेके आए हां गल्लां बातां दा तुहाडे नाल सांझ पावांगे जानकारी दी, मनोरंजन दी, और बच्चियां दी हाजरियां वी जरूर ते जरूर लगणगे। और जदों असीं गल करदे हां तुहाडे मनपसंद प्रोग्राम बाल जगत दी, बच्चो तुहानू हमेशा आगाह करदे हां, सतर्क करदे हां, जागरूक करदे हां, कोशिश करदे हां इहो जिही इक कि तुसी इक परिपक्क शख्सियत दे मालक बन सको, क्योंकि शुरुआत जिहड़ी है उह बचपन तों ही हुंदी है।
0: और बचपन की जदों गल हुंदी है तां मैनू ओ खूबसूरत लाइना याद आउंदियां ने अज दे दिन करके कि मां वर्गा कण छावां बूटा मैनू नज़र ना आए, लैके जिस तों छां उधारी रब ने स्वर्ग बनाए। और वाकई जी मां दुनिया दे उत्ते एक यूनिवर्सल फेनोमेना, बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। और मां जिहड़ी है ना वह निरस्वार्थ अपने बच्चियां दी सेवा करदी है, उन्हनु पालदी है, पोसदी है और कामयाबी वल वधदियां देखदी है कि जिसका दुनिया ते कोई होर सानी नहीं है।
1: जी बिल्कुल। और जदों असीं खास गल करदे हां मई महीने दे दूजे एतवार दी ते मदर्स डे बहुत ही वधिया तरीके दे नाल हर कोई मनाउंदा, हर कोई चाहुंदा है कि असीं अपने मदर लई, अपनी मां लई कुछ कर सकीए। और कुछ इहो जिहियां कारगुजारियां अजकल दे समें दे विच प्यारे प्यारे बच्चे जरूर ते जरूर करदे ने। जदों असीं गिफ्टिंग दी गल करदे हां, जदों असीं उहनां दे लई कुछ सरप्राइज़ दी गल करदे हां, जिहड़े कि अजोके समें दे विच आम दी तरह बहुत ही ज़्यादा शब्द जिहड़े ने उह वरते जांदे ने। सो इस दे नाल नाल सब तों जरूरी है जदों तुसीं अपना सवेर तो लैके शाम तक दा समा जिहड़ा है उसनू पूरी तरतीब तरीके दे नाल चला सको, समय बत्ता कर सको, अपनी माँ दा कहना मान सको, जो चाहुंदे ने उह कर सको, और जो तुसीं चाहुंदे हो जेकर उह सही है चंगे तरीके उहनां कोलों मनवा सको। इह सारियां चीज़ां दा सुमेल जिहड़ा है ना उह उहनां सरप्राइज़ ते गिफ्ट तों वी बहुत ही ज़्यादा वड्डा बन के सामने आएगा।
0: सो प्यारे बच्चिओ, अज दा खूबसूरत भागां भरिया दिन असीं मनाउणे पए आ। और देखो जी वैस्टर्न कल्चर दे विच ओ मदर्स डे मनाउंदे आ साल दे विच एक वारी, पर असीं जिहड़े भारती आ ना हर रोज़ उहनूं मनाउंदे आ, क्योंकि असीं अपनी मां दे हत्थां दा बणिया खाणा रोज़ खाणे आ, उहदे नाल बहुत सारा समां बती

खूबसूरत जी म्यूजिकल ब्रेक तो बाद एक बारी फिर स्वागत है। बच्चों का मनपसंद प्रोग्राम चलता पाया जी बाल जगत, और बाल जगत दे विच बाल कलाकार भी खूब कमाल करते हैं। घर बैठे जेड़े बच्चे ने वो की करते हैं कि अपने स्मार्टफोन का स्मार्ट वाला प्रयोग करके वो सानू अपनियां रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं। रिकॉर्डिंग दे विच की हुंदा है कि कोई कविता, कोई कहानी, कोई गीत, और कदी कदी तो वह इंस्ट्रूमेंट भी कोई प्ले करके भेजते हैं, और असी की करते हैं उस आवाज़ नू, उस परफॉर्मेंस नू इस प्रोग्राम दे विच हर ऐतवार पेश करते हैं। और बहुत बारी बच्चे गुरप्रीत जी इदा भी करते हैं कि सानू चिट्ठियां भी कई बारी लिखनिया शुरू कर देंगे ने। सो प्यारे बच्चे, तो फीडबैक जो है ना वो सानू चंगा लगता है, और तुसी ये

0: नॉलेज दा पल्ला फड़ के चलते ने, वह हमेशा अपनी कामयाबी दे झंडे जिंदगी दे विच गड़दे ही रहते हैं। और गल करिए जी 16 मई की, तो 16 मई का दिन सानू याद कराउंदा है कि नैशनल डेंगू डे। और देखो जिदा ही गर्मी आती है मच्छर भी प्रगट हो जाते हैं, और मच्छर कितों आते हैं, साढ़े आले दुआले तो। एक मौसम है इन्हों का, और ये उस मौसम के पैदा हो जाते हैं, और खास करके वो वाले मच्छर बड़े खतरनाक ने जिहड़े ताजे पानी के उत्ते पैदा होंदे ने, जिन्हां नूं डेंगू वाले मच्छर कहा जाता है। और डेंगू जदों किसी नूं गुरप्रीत हो जाता ना तो बड़ा औखा करता। प्यारे बच्चों, सावधानी सब तो वधिया हल है। जे असी अपने आले दुआले नूं साफ रखांगे, पानी किते नहीं खड़ा होण देंगे, जे घर दे विच किते मच्छर है तो स्प्रे कीते जा सकते ने, साफ सफाई की जा सकती है, और इहदे नाल डेंगू ते कंट्रोल भी किया जा सकता है। सो प्यारे बच्चियो, मच्छरां दे नाल मरन वालियां दी संख्या दुनिया दे उत्ते बहुत ज़्यादा है, और इस करके ये अवेयरनैस भी स्प्रैड की जाती है कि इन्हां मच्छरां नू कदे भी लाइटली ना लो।
1: जी बिल्कुल, प्रोग्राम खत्म करने तो पहला आखिरी नॉलेज टाइम का दिन जड़ा है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आर्म्ड फोर्सेस डे। सानू पता होना चाहिए कि आर्मी, नेवी, एयर फोर्स सारिया ही सेवावां बलिदान अते हिम्मत दे नाल हमेशा ते हमेशा जिहड़ियां ने वो डटियां हुई ने हद्दां सरहद्दां दे उपर, और एक सलाम जरूर तो जरूर बनता है, सल्यूट जरूर तो जरूर इन्हां नू बनता है। वख-वख देशां दे विच इह खास दिन वख-वख दिनां दे विच मनाया जाता है। जदों असीं भारत की गल करते हैं तो तीजे शनिवार नू इह दिन जड़ा है जरूर तो जरूर मनाया जाता है। साडा भी फर्ज बनता है ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ।
0: ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਨੌਲੇਜ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਨੋਟ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਚੁੱਕੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਓ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ 8284587799, ਯਾਨੀ 8284851789, और इस नंबर दे उत्ते सानू तुसी अपनियां रिकॉर्डिंग भेज दिओ। और हुण गुरप्रीत और सुखदीप नू दिओ इजाजत इस वादे दे नाल कि अगले हफ्ते इसे टाइम इसे फ्रीकुएंसी दे उत्ते तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम लैके फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई
1: जय।

0: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇੜੇ BMC ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: कौन से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और NDA दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री N रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाश।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

जीवन मृत्यु दे इस गीत बाद आप सुन रहे हैं अगला गीत, लता मंगेशकर ने सुन रहे हैं, फिल्म है विदाई।

भी जाना जाता है और जिसे पीएम मित्र स्कीम के तहत तैयार किया गया है। जनाब मोदी सिंधु अस्पताल को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। ये इदारा हैदराबाद में बनाया गया कैंसर के लिए मखसूस जदीद तर्ज का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हिफ्जान सेहत मरकज है जो किसी मुनाफे के बगैर काम करेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी के बानी जोसेफ विजय को आज सुबह वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर लेकर ने

0: डीएमके से है। जनाब जोसेफ विजय को कांग्रेस से वीसीके सीपीआईएम सीपीआई और आईयूएमएल की हिमायत के साथ 234 रुकनी ऐवान में 120 अरकाने असेंबली की हिमायत हासिल है। लोकभवन के एक अखबारी बयान के मुताबिक गवर्नर मौसूफ ने वजीर आला जोसेफ विजय को हिदायत दी है कि वो बुध के रोज या उससे पहले असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने पर जोसेफ विजय को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार आवाम के रहन सहन को बेहतर बनाने की खातिर तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके ने टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय को तमिलनाडु के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के फौरन बाद मुबारकबाद पेश की। आसाम में हेमंत बिस्वा सरमा को इत्तेफाक राय से बीजेपी कानून साज पार्टी के साथ साथ एनडीए कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में मजमूई तौर पर पार्टी के 8 अरकाने असेंबली ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा का नाम तजवीज किया। वहां मौजूद दीगर अरकाने असेंबली ने इसकी तायीद की। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी धोखाधड़ी केस में पंजाब के वजीरे सनत संजीव अरोड़ा को 7 दिन के लिए ईडी की तहवील में भेज दिया गया है। गुरुग्राम में काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम से मुतालिक पीएमएलए की एक खसूसी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये कार्रवाई की है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि मगरबी एशिया में भी कशीदगी जल्द दूर हो जाएगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये तंबीह भी की है कि अगर टकराव में इजाफा होता है तो सभी फरीकों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने गुजरात और राजस्थान में कल तक शदीद गर्मी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक शुमाल मगरबी भारत में भी अगले 7 दिन के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में रफ्ता रफ्ता 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने का इम्कान है। चीन के शहर शंघाई में जारी तीरंदाजी के आलमी कप के दूसरे मरहले में दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोद पर मुश्तमिल भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने आज एक ड्रामाई शूट ऑफ के बाद मेजबान चीन को शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहौलियाती जिम्मेदारी नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर और दाखिली बहबूद के जरिए एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने की खातिर इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। तमिलनाडु में जोसेफ विजय ने चेन्नई में वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 9 वजीरों को भी हलफ दिलाया गया। आसाम में हेमंत बिस्वा सरमा को इत्तेफाक राय से बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी धोखाधड़ी केस में पंजाब के वजीर सनात संजीव अरोड़ा को 7 दिन के लिए ईडी की तहवील में भेज दिया गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है और तीरंदाजी वर्ल्ड कप में शंघाई में भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने शूट ऑफ में चीन को हराकर सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते। आओ सुनते हैं मोहम्मद रफी नू, फिल्म है सुहागन।

0: तो सुन रहे से फिल्म सुहागन दा गीत, आवाज सी मोहम्मद रफी दी।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों,
2: मैं इथे हां।
3: तेनू नहीं अनु, मोबाइल चार्ज करना सी,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: अजय पब्लिक पोर्ट तो चार्ज कीता ता तोहाडा निजी डाटा हो जावेगा पब्लिक।
2: देखिया
3: पापा रुको, मैं पे करदा हां। नो सिग्नल,
4: हुण की करोगे?
3: मुफ्त वाईफाई है ना।
2: मूर्खा सुधर जा।
4: पेमेंट्स ले, कोई ओपन वाईफाई नहीं,
3: मतलब धोखा तड़ी नू। बाय बाय।
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो वित्तीय तौर पे स्मार्ट।
0: तुसी मोहम्मद रफी नू सुन रहे सी फिल्म सी सुहागन, ते हुण आओ सुनते हां गीत आशा भोसले दा गाया होया, फिल्म है मुक्ति।

0: ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰਜ਼ੀ ਵੇਰਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਦੇ 2:15 ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के GST धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया।

0: उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
4: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी विन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद

0: अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमेरिकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टुकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਿਹਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ 35.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ 23.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ 35.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ 25.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ 35.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ 24.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ 36 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ 24.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਮਈ 2026 ਦਰਮਿਆਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗਰਜ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 10-11 ਮਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਤੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੀ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੰਗਲੀ ਧਰਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ।

0: एसी प्रोग्राम रंगली धरती।
1: दीदी
2: हाँ?
1: देखो
2: हैप्पी सोलवा बर्थडे।
1: दिखा, वाह मेरा फेवरेट कलर।
2: हमेशा शॉपिंग
1: जानदा हमा, खर्चे करन दी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करन दी भी यही उम्र है।
4: मैंने पता है बापू, सेव करो, सही थां ते निवेश करो, मूल रकम ते ब्याज मिलेगा, जिसनु दोबारा निवेश करन ते ब्याज मिलता रहेगा।
1: मैंने पता है ना।
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो वित्तीय तौर ते स्मार्ट।
0: असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से इस समय दिन के 3 बज रहे हैं। साड़ी सभा हुण समाप्त होंदी है ते अगली सभा नाल जुड़ांगे शाम 4 बजे। तद तक सानूं आग्या दिओ। धन्यवाद।
6: नमस्कार, डीटीएच डीयर पंजाब सेवा का ये जलंधर केंद्र है। इस वक्त 3:06 हो चुके हैं तो समय हो रहा है न्यूज़ हेडलाइंस का।

एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। गुरुग्राम की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के सनत मंत्री संजीव अरोड़ा का इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को 7 दिन का रिमांड दे दिता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गरीबों ते लोड़वंद परिवारों नूं पौष्टिक खुराक मुहैया करवाउण लई राशन किट वंड के मेरी रसोई स्कीम की शुरुआत की। पंजाब च खरीद रुत दौरान कणक की आमद अते खरीद दोवां पक्षों 122 लख मीट्रिक टन का आंकड़ा पार कर गया। पंजाब राज कानूनी सेवावां अथॉरिटी वालों सूबे भर में कल लाई गई दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत राही 4,68,633 केसां दा निपटारा कीता गया। सिक्ख्या मंत्रालय गर्मियां दीआं छुट्टियां दौरान देश भर दे सारे स्कूलों विच भारतीय भाषा समर कैंप 2026 कराएगा। अते तीरअंदाजी विच भारत दी औरतां दी रिकर्व टीम ने अज शंघाई विच तीरअंदाजी विश्व कप पड़ा 2 विच सोने दा तमगा हासिल कीता है। एसी हुण तक दीआं न्यूज़ हेडलाइंस। ते हुण समां हो रहा है चिट्ठियां मिठियां दा। हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल तुहाडे? मैं आरजी पूनम सेठी इस वक्त तुहाडे नाल जुड़ चुकी हाँ प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां दा। मैं आरजी पूनम सेठी तुहाडा सारिआं दा तहे दिल तों स्वागत करदी हाँ प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। हाँ जी दोस्तों, तुहाडीआं चिट्ठियां मेरे हाथ विच ने, इक इक करके पढ़ांगी ते तुहाडे गीतां दी फरमाइशां नूं जरूर पूरा करांगी। कुछ जानकारी तुहाडे नाल सांझी वी करांगी ते कुछ दिल दीआं गल्लां वी करांगी। ते हुण आपां चिट्ठियां पढ़दे हाँ। चिट्ठी आई है मलोट तो जगतार गिल, परमजीत कौर गिल, गैवी गिल, अमन गिल, सुखबीर सिंह छाजली तो कुछ होर सज्जन मित्र भी ने, उन्होंने भी नाम लिखे ने। पिंड बुरज सिद्धवा मलोट तो सरबजोत सिद्धू, अविताज सिद्धू ते जगतार जग्गा तौला किंगरा तो। फिर चिट्ठी आई है मुल्लापुर मंडी तो कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, शीश शर्मा, बिट्टू जैन, दीपक जैन। फिर पुरानी मंडी मुल्लापुर तो राजेश जैन, अरुणा जैन, गौतम जैन, रसगुल्ला जैन, नगीना जैन। ते मंडी अहामा अहमदगढ़ी तो बिट्टू राजा, नरिंदर शर्मा, सविता शर्मा, पुष्कर शर्मा, खनिश शर्मा ते जे बी राव, बुलबुल राव वालों चिट्ठी आई है। फिर करणवीर हाउस गुरु गोबिंद सिंह नगर पूछो कैंचियां तो प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर ते सिमरन, कुलदीप कौर, एकम, दमन, अभिजोत, इन्हां सारिआं ने ही पंजाबी गीत नूं सुनन दी इच्छा रखी है। इस तों इलावा जिन्हां ने सानूं चिट्ठी लिखी है, वह चिट्ठी आई है पिंड कुड़ियाना जिला फाजिलका तो पंजाब तो श्री सरदार मलकीत सिंह कुड़ियाना, मनजीत कौर बठिंडा, दपिंदर सिंह चेयरमैन, पोता गुरशबद सिंह, जीत सिंह कुड़ियाना, दर्शन सिंह साबका सरपंच, समूह बराड़ परिवार ते दोस्त कुलवंत मलोट वालों चिट्ठी आई है। इन्हां सारिआं दी ही मिली जुली फरमाइश ते असीं तुहानूं एक गीत सुनाउण जा रहे हैं। गीत तो बहुत ही खूबसूरत गीत है, बलकार सिद्धू की आवाज़ में फुलकारी गीत आपां सुनांगे। ये गीत की फरमाइश आई है पिंड लोहगढ़ ठाकरा वाला फिरोजपुर तो, भेजन वाले ने स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरमान सिंह, पोत्रा गुरनूर सिंह, इन्हां ने बलकार सिद्धू की आवाज़ में गीत सुनने की फरमाइश रखी है। आपां ये गीत तुहानूं जरूर सुनावांगे, बहुत ही खूबसूरत गीत है, दिल नूं लगन वाला गीत है। आओ सुनते हैं गीत बलकार सिद्धू का फुलकारी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण च तंदुरुस्त नौजवानों की अहम भूमिका है। श्री मोदी ने आज सवेरे बेंगलुरु विच आर्ट ऑफ लिविंग दे 45वें वरेगंढ समारोह विच हिस्सा लिया। तमिलनाडु विच तमिलगा वेतरी कड़गम के संस्थापक श्री जोसफ विजय ने आज सवेरे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकी। असाम च सीनियर बीजेपी नेता डॉक्टर अहमद बिस्वा शर्मा नूं पार्टी विधायक दल के नाल नाल

चिट्ठी आई है, पिजन वाले ने जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक ते पूरा डागला परिवार वालों चिट्ठी आई है। फिर पिंड नुकेरियां नेड़े मंडी रोड़ा वाली तो कश्मीर सिंह करनावाल पिजन वाले ने चिट्ठी है, नाल कुछ मित्रां दे भी नाम लिखे ने, परिवार के मैंबरां दे नाम लिखे ने, जिवें कि सुखजीत सिंह करनावाल, सुखचरण सिंह, बराड़ ढानी, नत्था सिंह, करतार सिंह, राणा हलवाई, पिंड चक्की चक पक्षी तो अनमोल, सहजप्रीत रहमत, खुशप्रीत गुरनूर, महेंद्र सिंह पिंड सदोके, ते एना ने सुरिंदर कौर ते हरचरण गरीवाल की आवाज़ विच गीत सुनन की इच्छा रखी है। गीत तो मैं लभ लिया, पुराना गीत है, बहुत ही वधिया गीत है, ओल्ड इज गोल्ड कहिंदे आ ना, ते सुरिंदर कौर ते हरचरण गरीवाल की आवाज़ विच अगला गीत सुनेंगे आपां, धरती नू कली करा दे, आओ सुनदे आ गीत।

आकाश दी थारे तीते होर जांद वांग मारे लौंग लिश तारे नी होर जांद वांग मारे लौंग लिश तारे नी साढ़े इश्क ने रंगली की थी तेरे जो बन दी परबात साढ़े इश्क ने रंगली की थी तेरे जो बन दी।

ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजता ठाकुर, ज्योति ठाकुर ते रियांश ठाकुर ने यह चिट्ठी लिखी है सानू। इस तो अलावा चिट्ठी लिखी है सानू पिंड आजम वाला तहसील फाजिलका तो सोहन सिंह बूक, निशान सिंह बूक, सीरत कौर, कीरत कौर, अमर लाल ते दादी जसवंत कौर ने। होर भी कुछ रिश्तेदारों के नाँ लिखे ने, बलविंदर कौर, सुरिंदर कौर, राज मिस्त्री महुआणा, बोधला ते बलदेव सिंह, चक कंध साह वाले, जगसीर सिंह टेलर ते अमर लाल। फिर टाली वाला जट्टा तो साहिब सिंह, सुखजीत कौर, बलविंदर, हरजिंदर, गिद्दड़बाहा तो मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा। फिर मुल्लापुर दाखा मंडी तो बिट्टू जैन, मट्टू जैन, बिट्टी जैन, दीपक जैन, राजा जैन, गौतम जैन, रसगुल्ला जैन, बर्गर जैन, रबड़ी जैन, टीटू जैन, नगीना जैन ते विक्की जैन ने भी सानू चिट्ठी लिखी है। फिर चिट्ठी बहुत दूरों आई है आशा रेडियो श्रोता संघ वालों मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र तो। भेजन वाले ने अभिजीत गुआनकर राही, श्रीमती सरिता गुआनकर, प्रिंस एकांश गुआनकर, बदलापुर मुंबई तो सिद्धांत गुआनकर, प्रिनिता गुआनकर, आकार हाइट्स बहादुर नागपुरा तो, माफ़ करना, नागपुर तो विशेली शलेश गुआनकर, श्वेता सुमित गुआनकर, कुमारी ध्वनि गुआनकर गुआनकर ते लाडला टुक टुक गुआनकर वालों चिट्ठी आई है। फिर चिट्ठी आई है चौधरी मार्केट अबोहर रोड मलोड़ तो कप्तान सिंह, सैकटरी शमशेर सिंह, धर्मिंदर शर्मा ते ठाकर ते हरफुल वालों चिट्ठी आई है। हुन आप अगला गीत सुनांगे हाकम सूफी की आवाज़ विच उड़ीका।

हाँ जी दोस्तों, मैं आरजी पूनम सिटी इस वक्त इस प्रोग्राम में पेश कर रही हूँ। हुणे आपां गीत सुन रहे सी उड़ीका हाकम सूफी दी आवाज़ विच। हाकम सूफी पंजाबी संगीत जगत दे एक नामवर गायक ते गीतकार सन, जिन्हां नूं अपनी साफ सुथरी ते म्यारी गायकी लई जाणिया जांदा है। उन्हां दा जन्म 3 मार्च 1952 नूं पंजाब दे ज़िला श्री मुक्तसर साहिब दे शहर गिद्दड़बाहा विच होया सी। उन्हां दे पिता दा नां करतार सिंह ते माता दा नां गुरदयाल कौर सी। उह 3 भरा ते 4 भैणां सन। उन्हां ने 10वीं गिद्दड़बाहा तों कीती ते बाद विच नाभा तों आर्ट एंड क्राफ्ट दा कोर्स कीता। उह पेशे वजों एक ड्राइंग अध्यापक सन ते बठिंडा दे जंगी राणा स्कूल तों सेवा मुक्त होए सन। हाकम सूफी ने गायकी दी सिक्ख्या फकीर मुहम्मद फकीर तों लई। उन्हां दी पहली कैसेट मेला यारां दा 1984 विच रिलीज़ होई, जो बहुत मकबूल होई। उन्हां दा सब तों प्रसिद्ध गीत पाणी विच मारां डीटां है। होर प्रसिद्ध गीतां विच किथे लाए ने सजना डेरे, मेरे चरखे दी टुट गई माल ते कोल बह के सुन सजना शामिल हन। प्रसिद्ध गायक गुरदास मान उन्हां दे बहुत करीबी दोस्त सन। मान उन्हां नूं अपना गुरु मार्गदर्शक मानते सन ते उन्हां ने स्कूल दे दिनां विच इकट्ठे अभ्यास करना शुरू किया सी। उह पहले अजिहे गायक सन जिन्हां ने स्टेज ते डब्बी यानी कि माचिस वजा के गाउण दी परंपरा शुरू की। उन्हां नूं हमेशा लचरता तो दूर रह के सभ्याचारक ते सूफियाना रंग दे गीतां नूं तरजीह दित्ती। हाकम सूफी दा 4 सितंबर 2012 नूं देहांत हो गया। उन्हां दी संगीतक देन नूं याद करदिआं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे विद्यार्थियां वल्लों उन्हां दे काम ते खोज भी कीती गई सी, एमफिल दी रिसर्च कीती गई सी। इह सी साडे प्यारे हाकम सूफी। ते हुण आपां प्रोग्राम नूं अग्गे वधाउने आं। समां सानूं ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा, थोड़ी जी चिट्ठियां आपां पढ़ांगे। चिट्ठी आई है मखू फिरोजपुर तों, बिल्ला बजाज हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मुनीश बजाज वल्लों। ये रणजीत कौर की आवाज़ विच नी ननाने बई माने गीत सुनना चाहते हैं। थोड़ी देर च आपां ये गीत सुनावांगे तुहानू। फिर पिंड पंगाला जिला फाजिलका तो जगतार गिल, गुरमीत गिल, नाजम गिल, सुखमन गिल, कमलदीप गिल ते एस के शर्मा ते जगतार टेलर ने सानू चिट्ठी लिखी है। फिर साढ़े बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुश मिजाज स्रोते चकला बाज़ार समाना तो पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल ते हसमुख जिंदल ने सानू चिट्ठी लिखी है। इन्हां तों अलावा ताश मुहम्मद असारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां ने चिट्ठी लिखी है आज़ाद नगर लक्षर हरिद्वार तों। ते हुण आपां अगला गीत तुहानू सुनाने आ नी ननाने बई माने रणजीत कौर की आवाज़ विच। आओ सुनदे आ गीत।

0: आकाशवाणी का ये है जलंधर केंद्र, प्रस्तुत है साहित्यिक पत्रिका परिमल। आप सबका अभिनंदन। आज के इस अंक में आप सुनेंगे एक परिचर्चा, विषय है कृत्रिम बुद्धिमता एवं हिंदी साहित्य। प्रतिभागी हैं प्रोफेसर सोमनाथ शर्मा, डॉक्टर पूनम महाजन एवं डॉक्टर नीलम सेठी।
1: आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर और ज्वलंत विषय है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं हिंदी साहित्य यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे दो महान विभूतियां, शिक्षा के जगत में बहुत ही बड़ी अहम भूमिका निभाने वाली डॉक्टर पूनम महाजन, हमारे दरमियान डॉक्टर मिस नीलम सेठी जो पूर्व प्राचार्य हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। मैडम पूनम जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता हिंदी में कहते हैं, ये क्या चीज़ है? हमारे जितने भी श्रोता हैं उन तक ये बात पहुँचे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या?
2: आदरणीय, आज इस विषय पे मैं, आप जो मुझसे पूछ रहे हैं उस पर मैं बात रखना चाहती हूँ। मुद्दा उठा है कृत्रिम मेधा है क्या, बुद्धिमत्ता है क्या। ये कंप्यूटर विज्ञान का एक टूल है। आज का युग है वो तकनीकी नवाचारों का युग है, और ये बात अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि विभिन्न डिजिटल माध्यम है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इंटरनेट का व्यापक प्रचार प्रसार है, और इसने मानव जीवन की कार्य प्रणाली पर बहुत प्रभाव डाला है। उसकी सोच विचार के ऊपर भी इसने अपनी पकड़ रखी है, और उसने ज्ञान को भी प्रभावित किया है। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि नवाचार जब आता है ना, तो सदैव व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तो ये एक मिश्रित रूप लेके आता है, परंपरा का और आधुनिकता का। तो सीधी सी बात है, जब नवाचार आएगा, व्यवहार बदलेगा, तो व्यक्ति प्रभावित होगा। जब व्यक्ति प्रभावित होगा तो समाज प्रभावित होगा, और जब समाज प्रभावित होगा तो साहित्य पर प्रभाव पड़ना
3: स्वाभाविक है,
2: लाजमी है, स्वाभाविक है। जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिकता और परंपरा का समन्वय निबंध लिखा था, तो उन्होंने कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो एक पैर से चलता है और एक पैर से खड़ा रहता है। और यही आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवीय ज्ञान का समन्वय जो है, ये हमारी पकड़ में है, इसी के ऊपर हम आज काम कर रहे हैं। अब बात आती है, आप कह रहे हो AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसने कैसे प्रवेश कर लिया, कैसे हमारे उसमें आ गया। कहते इसने नए नए विचार दे दिए, नए नए कथानक की संरचना दे दी, नए नए शीर्षक के सुझाव दे दिए, बहुत कुछ दिया। लेकिन मैं यहाँ पर पहले ही कह देना चाहती हूँ कि वो कागज़ की रगों में धड़कने भर नहीं सकता। वो सब कुछ कर सकता है मगर वो मर नहीं सकता। मशीनें छीन लेंगी शायद सारे लफ्ज दुनिया के, मगर जो अश्क आंखों में है वो तर नहीं सकता।
3: सही,
1: बहुत अच्छी बात।
3: सही,
1: बहुत अच्छी बात,
3: बहुत ठीक।
1: और जैसा कि हम जानते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी ये दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट हुआ था 2026 में।
3: हाँ जी।
1: और 16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय AI कार्यक्रम हुआ। इतना प्रभावशाली हुआ कि उस को एक दिन के लिए लोगों की मांग पर और बढ़ा दिया गया। और आज जब भारत की हम बात करते हैं, डिजिटल भारत की बात करते हैं, तो वहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में ये बात कही, ये जो AI है इसको मानव केंद्रित होना चाहिए। ये क्योंकि हमारी जो धरातल है, हमारी जो पृष्ठभूमि है, हमारा जो भारत है, इसकी एथिकली इसका संबंध होना चाहिए, नैतिकता से संबंध होना चाहिए। क्योंकि जो भी AI है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, तो उन्होंने इस पर विशेष

0: जिसमें लगभग बहुत सारे 100 देशों के प्रतिनिधियों से इसमें सम्मिलित हुए। उन्होंने इस विषय पर बड़ी विस्तृत चर्चा की और इससे पहले भी भारत के बहुत सारे जो प्रदेश हैं जैसे मेघालय है, राजस्थान है, गुजरात है, इसमें इसके सम्मेलन हुए, ताकि जो हम इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं उसके कोई उसमें कोई त्रुटि न रह जाए।
1: सही
0: विश्लेषण हुआ, विवेचन हुआ और इसका असर जो था, उन्होंने जैसे कहा कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो सिक्स से लेकर या टेंथ से लेकर जो ट्वेल्थ तक के बच्चे हैं, उनको AI की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इस विषय पर एक बहुत गंभीर चिंतन हुआ और पूरा भारतवर्ष इसको मानने के लिए तैयार है। तो इसके माध्यम से बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, संभावनाएं भी हैं, फायदे भी हैं, इसके बहुत सारे उद्देश्य भी हैं। इन पर बातचीत करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी हो गया है।
0: और जैसे कि एक पर्यावरण है, जैसे मैडम आप थोड़ा से ये बताएं कि जितनी भी हमारा जो पर्यावरण है, शिक्षा है, चिकित्सा है, वाणिज्य है, जितनी भी हमारे एस्पेक्ट हैं, इन पर ये बहुत बड़ी AI जो है प्रभाव डाल रही है, यानी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसका बहुत बड़ा एक असर है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
1: सोमनाथ जी, मेरे ख्याल से पूनम ने काफी विस्तार कर दिया है AI का। अब मैं इसको हिंदी साहित्य के साथ जोड़ू, क्योंकि हमारा विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हिंदी साहित्य, विशेष
0: जी
1: विशेष हिंदी साहित्य। तो यहाँ से भी पूनम ने बात की थी मशीनी बुद्धि में भावना कहाँ से लाएंगे।
0: हाँ, बहुत अच्छी बात है,
1: ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी थी। संवेदना कहाँ से लाएंगे,
0: बिल्कुल सही बात।
1: हाँ जी, एक लोहे के पुर्जे में, वो पता क्या है जी, वो तो एक हांडी है, एक हांडी है, हमने भरी है, वो इंसान निर्मित है, वो जो हमने उस पुर्जों में एक तो डेटाबेस भर दिया हमने सारा उसमें, फिर हमने क्लाउड में वो स्टोरेज कर दी है सारी जी, फिर उसको विश्लेषण की हमने क्षमता दे दी है जी सारी, फिर हमने उसको एल्गोरिथम दे दिया है गणित वाला जी, उससे वो क्या करता है, उसके तो जो कुछ अंदर पड़ा हुआ है ना वही उसने क्या करना, सदियों पुराने डाटा भी उसने निकाल लेने हैं वहां से, है ना जी, अपने जो उसके पास एल्गोरिथम की क्षमता है, विश्लेषण की क्षमता है, उसने उन डाटों का विश्लेषण कर देना सारा, और जो चीज आपने मांगनी है उसको नवीकरण करके उसने पेश कर देना। तो आपने नैतिकता की बात की थी, नैतिकता तो सही, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है जी, है ना जी। तो इंसान के अंदर जो भावनाएं होती हैं, मोटी मोटी भावनाएं तो वो पकड़ लेगा, AI पकड़ लेगा। आपने कहा हर्ष पर मुझे एक कविता लिख दो जी, खुशी पर, खुशी पे आ जाएगी, है ना जी। आपने कहा विषाद पे लिख दो जी, विषाद पे आ जाएगी। चलो अब वो अपना सारा डेटाबेस निकाल लेगा, विश्लेषण कर देगा, क्लाउड स्टोरेज से निकाल लेगा, जो कुछ उसके पास धरा पड़ा उस हांडी में, जो हांडी में वही तो वो चम्मच में से निकलेगा। तो उसमें मानव की सूक्ष्म भावनाएं कहाँ हैं, और साहित्य तो कोई एक चीज से नहीं बनता है, हम जानते हैं कि बहुत सूक्ष्म भावनाओं से बनता है साहित्य, विचारों से बनता है साहित्य, भाषा की संरचनाओं से बनता है साहित्य, कल्पना से बनता है साहित्य, मनस्थितियाँ उसके अंदर होती हैं, वो बाहरी परिस्थितियों से उसको मिलाता है, पता नहीं कैसी कैसी वो जटिल संरचनाएं करता है कि आत्मा की बात जा आत्मा तक सीधी पहुँचती है। अब हाँ, जिसमें आत्मा है ही नहीं तो वो दूसरे की आत्मा तक कैसे पहुंचेगा, उसको कैसे छुएगा, ये मेरी समझ से बाहर है।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने की कि आत्मा की आवाज को जन जन तक पहुंचाना,
1: हाँ जी,
0: भावना को, नैतिकता को, संस्कारों को, समाज को, संस्कृति को, यानी पूरे विश्व पटल पर लाने का काम अगर कोई कर रहा है तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज कर रही है। लेकिन जो साहित्य है वो भी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। साहित्य में भावनाएं होती हैं, बिना भाव के साहित्य नहीं होता,
1: हो ही नहीं सकता। तो
0: एक मशीन साहित्य नहीं बन सकती। हम
1: जी,
0: जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो उससे हम एक सामने, हमारे सामने बात आती है कि ये जो हमारी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपकी जो शैली है वो भी पढ़ने में सक्षम हो रहा है। लगभग 7200 के करीब, 7200 के करीब जो विश्व में
1: भाषाएं
0: बोली जाती हैं, और उन भाषाओं को अगर सुरक्षित रखना है तो AI अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। साहित्य की बात करते हैं तो क्योंकि साहित्य में भावनाएं हैं, क्योंकि अगर हम कविता पढ़ाते रहे तो उसमें भाव और विचार होते हैं, हृदय और बुद्धि होती है, तो इसमें बुद्धि का समावेश तो है लेकिन भावना का समावेश नहीं है
1: जी, बुद्धि भी कृत्रिम
0: और
1: है,
0: और जो बुद्धि है जो इसमें फीड किया जाएगा वही होगा, लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का फायदा नहीं है।
1: नहीं, फायदा तो बहुत है।
0: मैं वही कह रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में,

0: बहुत बड़ा रोल है, चिकित्सा के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन है बहुत बड़ा रोल है, और जितने भी आपके टेस्ट होते हैं वो AI के माध्यम से होते हैं, है ना। और फिर पर्यावरण में क्या बारिश होगी नहीं होगी, कैसा सूखा रहेगा, वो भी इसमें बड़ा
1: इसके बड़े
0: ड्रोन के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं ना इसकी। तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता हर क्षेत्र में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है, और साहित्य जो है वो कहीं ना कहीं देखो साहित्य को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी भूमिका
2: है
0: जो हमारी जितनी भी पांडुलिपियां हैं,
2: कोई नकार नहीं सकता इस
0: वो
2: बात को।
0: जितनी भी हमारी पांडुलिपियां हैं उसको सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। और भावना, जहां तक हम भावना की बात करें, मैडम ने भी बात कही कि ये भावों को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आप इस भावना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे मैडम?
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ लिख सकता है। मैडम ने कहा हर्ष पे कविता लिख दो, वो लिख देगा, लेकिन वो विद्रोह कहाँ से लाएगा जो कबीर के दोहों में झलकता है, वो पीड़ा कहाँ से लाएगा जो महादेवी की कविताओं में है, वो दर्द कहाँ से लाएगा जो स्रोत स्मृति में निराला ने दिखाया था, धन्य में पिता निरर्थक था, तेरे ही तो कुछ कर ना सका, जाना तो अर्थ गम उपाय पर रहा सदा संकुचित काय। महादेवी जी कहती है मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना
2: मेरा ना कभी अपना हो,
1: तो ये वाला दर्द उसमें नहीं झलक पाएगा। शैली को पकड़ेगा लेकिन ये दर्द वो नहीं ले पाएगा। यही इसीलिए कहती हूँ कि इसको आप सहायक उपकरण के लिए यूज कीजिए, उसका प्रयोग कीजिए, विकल्प मत बनाइए।
0: बहुत इसको उपकरण के रूप में प्रयोग करें,
1: विकल्प मत बनाइए,
0: ठीक है। बहुत
1: इसको लेखक ना बनाइए, लेखनी का सहायक बनाइए।
0: सहायक बनाइए, बहुत अच्छी बात कि इसको लेखक ना बनाए, लेखनी का सहायक बनाए।
2: इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हम देखो जी, ये तो एक ऑटोमेटिक पायलट है
0: जी,
2: स्वचालित चालक है,
0: चालक है, हाँ जी।
2: इसके हाथ में जहाज पकड़ा देंगे तो फिर तो वो दिशा ही नहीं जाएगा।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत।
2: हम जहाज अपने हाथ में रखें, चालक खुद बने रहे, उसे सह चालक के रूप में बिठा लें। जिस तरह साहित्य में बहुत सारा फायदा उससे हो भी सकता है, आज नए नए रचनाकार हैं, बड़ा फायदा ले भी रहे हैं, AI का बहुत बड़ा फायदा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ले भी रहे हैं, नई नई शैलियां उसमें से ढूंढी जा सकती हैं,
1: विषय
2: भाषा, हाँ जी विषय चयन, इतनी दुनिया इतने विषय हैं, पहले तो इतने विषय नहीं होते थे, अब तो विषयों का कोई अंत ही नहीं है क्योंकि सारा ग्लोब एक दुनिया एक गांव बन चुका है, तो नए नए विषय आप वहां से उठा सकते हैं। और मजेदार बात देखिए, अब जैसे मान लो मैं कोई उपन्यास लिखना चाहती हूँ तो, लेकिन उसमें मैं कोई युद्ध वर्णन देना चाहती हूँ, तो मैंने तो युद्ध आंखों से देखा कोई नहीं, तो उसके कोई वर्णन शर्णन कोई वहां से बिल्कुल बिंबात्मकता कोई इमेजिनरियां इमेजरीज कुछ ना कुछ आप वहां से स्टडी कर सकते हैं, लेने वाली चीजें लीजिए, लेकिन उसके हाथ में आप वो हैंडल ना पकड़ा दीजिए कि तुम करो,
0: बहुत अच्छी
2: उससे
0: बात
2: ना होगा, उससे ना होगा
0: कि जो बिंब विधान साहित्य में एक साहित्यकार चित्रित कर सकता है, जो बिंब विधान ले सकता है, वो हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से नहीं ले सकते। जो भाव, जो पीड़ा, जो करुणा, जो वेदना, जो दर्द, जो एहसास एक भावुक व्यक्ति जो है चित्रित कर सकता है, वो
1: नहीं कर सकते
0: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से, नहीं कर सकते।
2: सोमनाथ जी आप याद करिए कि वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक और पहला ही श्लोक जिसको पहली कविता भी कह देते हैं संस्कृत की, मान निषाद प्रतिष्ठाम तम गमय शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुन मिथुनाथ एकम वधि काम मोहितम। दर्द से ही शुरुआत हुई है सारी कविता की, दर्द से क्रौंच प्रेम प्रणय में मग्न थे, बीच में से जोड़े में से एक को मारा, तो जो वाल्मीकि के मन से उभरा वो पहली कविता बनी, रामायण का पहला श्लोक वो बना है देखा जाए तो। और निराला ने कहा भी है मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई दुख की पीड़ा पड़ी हृदय पर झट उमड़ वेदना आई। और पंत ने भी यही कहा भी योगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, है ना, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ये तो जब भावों का उद्वेलन होता है कविता और साहित्य का तो जन्म ही वहां से।
0: बहुत अच्छी बात कि ऋषि वाल्मीकि ने जब वाल्मीकि रामायण लिखी तो उसमें एक जो पीड़ा थी उनके मन में आई,
2: उसी ने जन्म
0: एक
2: दिया
0: पक्षी को देख करके
2: जी,
0: और उसी पीड़ा के माध्यम से ही उन्होंने एक बहुत बड़े महाकाव्य की बहुत बड़े ग्रंथ वाल्मीकि रामायण की जिसके नाम से जाना जाता है उसकी रचना कर रहा थी। तो वो पीड़ा, वो दर्द, वो एहसास, वो करुणा, वो वेदना अगर किसी में है तो वो साहित्यकार के हृदय में है, और साहित्यकार का हृदय कहाँ से लेंगे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से। और जैसे आपने कहा कि इसको एक उपकरण के रूप में प्रयोग करें, इस विकल्प के रूप में प्रयोग

0: करें, ऐसा नहीं कि उसको लेखक बना दें, तो लेखक तो वो बन नहीं सकती, लेकिन लेखन में सहायता जरूर कर सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है पूनम जी आपने कही। तो आप इसके बारे में और कुछ विस्तृत हमारे जितने भी श्रोता हैं उनको जानकारी दें।
1: अभी यहाँ बैठे बैठे मेरे मन में कुछ पंक्तियाँ आई हैं, कहते लफ्जों से खेलना भी कहाँ आसान है।
2: हाँ जी,
1: रूह से लेके कलम तक का सफरनामा है ये।
0: वाह वाह, बहुत अच्छी बात
1: है ना। तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता से नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि लेखक का अनुभव बोलता है, लेखक के पुरखों का अनुभव बोलता है, लेखक का संघर्ष बोलता है, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नहीं।
2: मशीन कहां से लाएगी वो अनुभव?
1: सोशल मीडिया जो आया है, इसने साहित्य के अस्तित्व को एक नए क्लेवर में डाल दिया। जो पहली सीढ़ी पर अभी लेखक खड़े हैं ना, उनको जब मंच नहीं मिलता वो सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो वहां पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सहारे से या उसकी सहायता से वो अपने लेखन में सुधार करते हैं। ये हमें एक बहुत बड़ा, ये कह सकती हूँ कि हमें उपलब्धि प्राप्त हुई है। जो नई पीढ़ी के लेखक आ रहे हैं ना, चाहे हम उन्हें ये कहें कि इन्होंने नकल किया, वो नकल नहीं है, उनको एक आश्रय मिला है, एक ये कह सकते हो कि उनको एक ड्राफ्ट मिल गया कि इसमें हमने रंग भरने हैं। तो ये सोशल मीडिया वाला जो मेरे सामने आया है, जिसको मैं समझ सकती हूँ, या मैं जो कहना चाहती हूँ,
2: पर रचनात्मकता का क्षरण न होने दे, एक बात तो पक्की है ना।
1: हाँ,
2: पॉपुलर होने के माध्यम के लिए कि डिजिटल डिजिटल आई जा रहा है सारा।
1: कहीं कहीं अगर आप समझो तो ये देखिए कि लेखक की अपनी लेखनी का भी यहाँ पे नुकसान हो रहा है।
2: वो तो पहले होगा,
1: लिखता है
2: वो तो पहले होगा
1: लिखता है, लेकिन अपने ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो वो ChatGPT पे या जेमिनी पे डालता है, इसको करेक्ट कर दो।
0: बहुत अच्छी बात आपने की।
2: हाँ जी,
0: कि इसमें मौलिकता का, नैतिकता का,
2: रचनात्मकता का,
0: रचनात्मकता का, सृजनात्मकता का अभाव है, है ना। इस अभाव को पूरा नहीं कर सकता, कर सकती कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और इसलिए हमें मौलिकता को लेना है, सृजनात्मकता को लेना है, अपनी संस्कृति को लेना है, अपने समाज को लेना है, आपकी समाज की जो समस्याएं हैं, उसकी जो विद्रूपताएं हैं, उनको चित्रित करना है। तो वो एक बहुत बड़ा साहित्य उसके लिए माध्यम है। अगर आज हमारी संस्कृति जिंदा है, हमारा साहित्य जिंदा है, हमारा दर्शन जिंदा है, और हमारी भावात्मकता जिंदा है, तो साहित्य के माध्यम से जिंदा है। तो इसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से अगर हम सारे का सारा यूं ही वर्णन करेंगे तो वो शायद अच्छा नहीं होगा। तो इस साहित्य को बचाने के लिए इसका सहारा लेना है, उपकरण लेना है, उसको एक साधन बनाना है, साध्य नहीं।
2: समझा जी, उपकरण के रूप में तो ये बहुत अच्छा है, उपकरण के रूप में तो ये बहुत ही अच्छा है। देखिए, ये पांडुलिपियां जो पढ़ी सड़ रही थी सदियों से, कोई ना इनको आगे लाता। अब कबीर, निराला, प्रेमचंद, हाँ जी, बालकृष्ण भट्ट, निर्मल वर्मा, सबके साहित्यों की रचनावलियां बन बनकर, ग्रंथावलियां बन बनकर डिजिटल लाइब्रेरियों में पड़ी हुई हैं। शोध के लिए कितना काम आसान हो गया है, 50 सन के, 60 सन के ग्रंथ तो अब लाइब्रेरियों में सब कुछ सुरक्षित पड़ा हुआ है। शोध के लिए राह बहुत आसान हो गई है।
0: ये बहुत अच्छी आपने बात की कि अनुसंधान के लिए जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि जितनी भी हमारी पांडुलिपियां हैं, जितनी भी हमारी और ग्रंथ हैं जो पढ़े हुए हैं, उनको सुरक्षित रखने में, आगे पहुंचाने में बहुत बड़ा इसका एक योगदान रहा है। लेकिन इसका एक मुझे लगता है कि जो इसका एक नुकसान भी हो रहा है, हमारी जो नौकरियां हैं हमारे बच्चों की, ठीक है ना, नोट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नौकरियां मिलेंगी भी, लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी जो नौकरियां भी छीनी जा रही हैं। ठीक है कि शासन की जो बात है, प्रशासन की जो बात है, वो एक तकनीकी साधन के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है। जो कानून बड़े बड़े अंग्रेजी भाषा में लिखे जाते हैं, एक सेकंड में वो ट्रांसलेट होकर के, जब वहाँ का जो कोई भी व्यक्ति है, वो उसको, जिसने केस किया हुआ है, उस तक पहुंच जाते हैं।
2: कई मीडियम बने हुए हैं, कई माध्यम है,
0: और एक सेकंड में पूरे विश्व में आप बात कर सकते हैं। और जो आप जितनी भी संगोष्ठियां हुआ करती थी, जितने भी सेमिनार हुआ करते थे, जितने भी वहां विश्लेषण, आलोचना, प्रशिक्षण, समीक्षा हुआ करती थी, उसका कुछ अभाव होता जा रहा है। क्योंकि वो चीजें जो है ना, वो शायद उसका, इसके माध्यम से हमारा नुकसान हो रहा है।
2: हाँ जी, मैं यहाँ जोड़ना चाहती हूँ कि पाठन संस्कृति भी जा रही हाथ से, पढ़ने वाली संस्कृति भी जा रही है। हर कोई वो शॉर्टकट ढूंढता है जी, चाहता है कि जल्दी से बस मैं, एक हाथ में मोबाइल हो मेरे और एक मेरे हाथ में लैपटॉप हो और कोई तीसरी चीज़ ना हो, तो इसलिए वो

0: पढ़ने वाली संस्कृत वो अब रही नहीं है, उसे वापस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए साहित्य सम्मेलन हो सकते हैं, उसके लिए पुस्तक मेले हो सकते हैं, उसके लिए पठन अभियान चलाए जा सकते हैं पठन पाठन के।
1: ये बहुत अच्छी बात है कि कई बार क्या होता है कि यही क्या कि नेगेटिव पॉइंट भी है कि टॉपिक दो कविता लो, कहाँ टॉपिक दो कहानी
0: कहानी
1: लो,
0: लो।
1: टॉपिक दो आलेख लो, ठीक है ना, ये इसके नेगेटिव है। क्योंकि मैं वही बात कह रहा हूँ कि इसमें जो भावात्मकता है वो कहीं खत्म होती जा रही है। कहते हैं कि जब लिपि आई ना तो सबसे पहले क्या होता था कि हमारी हम कंठस्थ विधि से
0: हाँ
1: याद
0: जी,
1: करते थे, हमारे दरमियान एक कंठस्थ विधि थी, हम जबानी याद
0: याद
1: करवाते थे
0: करते।
1: और जबानी आगे होती। लिपि आई तो 30% हमारा जो कंठस्थ विधि थी उसको खा गई। अब AI आ गया तो AI की वजह से हमारी जो बहुत सारी सोचने की क्षमता
0: क्षमता
1: है
0: है खत्म हो रही
1: वो
0: है
1: भी
0: जी,
1: समाप्त हो रही है,
0: खत्म हो
1: उसका
0: रही
1: भी
0: है।
1: वो भी क्षीण होती जा रही
0: नहीं,
1: है।
0: रेडीमेड के
1: हमें
0: आदि हो
1: अपने
0: रहे हैं ना,
1: हम
0: आत्मविश्वास कम हो रहा
1: हमारा
0: है। हाँ
1: आत्मविश्वास जो है वो
0: हाँ
1: क्षीण होता जा रहा है। तो ये क्योंकि इसका एक नुकसान भी तो है ना। और दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा कि आजकल बायोमेट्रिक लगे हुए हैं, है ना, आजकल ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो कहीं अगर क्योंकि आदमी दौड़ा जाता है, अब टाइम की का महत्व तो हो गया लेकिन वो देता क्या है वहां जाकर के, ऑफिस में, कार्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी संस्था में जाकर के क्या देता है इसका तो उसको नहीं पता। टाइम तो हम देख लिया लेकिन वो चीज़ नहीं है। इसका ये भी है, बच्चों की नौकरी जा रही है, ठीक है, हमारी भावनाएं क्षीण होती जा रही है, लिखने की जो क्षमता है विद्यार्थियों की कमी हो रही है। आपने देखा होगा कि पहले जब लिखते थे कि जब पत्र लिखा करते थे और पत्र जो है उन्हीं के माध्यम से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर की उपाधि पर पहुंच गई, क्योंकि नेहरू ने पत्र ही लिखे थे
0: मानसिक
1: और
0: परिपक्वता मिली।
1: पत्रों के माध्यम से। अब आपने देखा होगा कि बचपन में क्या करते थे, पत्र लिखते थे एक दूसरे को, तो जब भी हम उस पत्र को पढ़ते थे तो पढ़ने के बाद हमारे मन में एक पूरे का पूरा वहां दृश्य जो था वो प्रकट हो जाता था और बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आज हम 1 सेकंड में लिखते भी हैं और दूसरे सेकंड में उसको डिलीट भी कर
0: डिलीट भी
1: देते
0: कर
1: हैं।
0: देते
1: ठीक,
0: हैं।
1: उसके लिए अगर अच्छे हैं वायरल भी हो रही हैं चीज़ें और लाइक्स भी मिल रहे हैं
0: हाँ
1: और लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं कि क्योंकि अगर उनको कोई लाइक्स कम आते हैं तो डिप्रेशन का
0: हाँ
1: शिकार। तो ये नुकसान उनकी बौद्धिकता पर, उनकी मानसिकता पर, उनके मनोविज्ञान पर, उनकी सोच पर ये असर तो डाल रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं इसका प्रभाव हो
0: सर,
1: रहा
0: आज की पीढ़ी जो है हमारी, वो इन सब चीजों से बिल्कुल
1: है।
0: अभिज्ञ है। बिल्कुल उनको नहीं पता कि कौन से पहले पत्र होते थे, कैसे लिखे जाते थे, कैसे एक दूसरे के भाव दूसरे तक पहुंचते थे। इन लोगों के लिए, इन नए बच्चों के लिए ये सब चीजें अब मायने नहीं रखती। यदि इसकी वजह से ये चीजें मायने नहीं रखती तो संस्कृति का ह्रास हो रहा है, संस्कृति का क्षय बहुत
1: हो रहा
0: बुरी
1: है,
0: तरह से,
1: संस्कृति
0: बहुत
1: हमारे
0: बुरी तरह
1: पीछे
0: से।
1: छूट रही है। हम ये नहीं कहती कि मैं पाश्चात्य का अनुकरण नहीं करूं, उसका भी हम अच्छी तरह से अनुकरण नहीं कर पा रहे। हम बीच की स्थिति में हैं, डामाडोल की स्थिति में हैं। या हमें यही कह दो, सजा कर लफ्ज वो कागज पे, महफिल कर भी दे शायद, मगर जो रूह का हिस्सा है वो शामिल कहाँ होगा।
0: हाँ
1: सहारा है ये बस लिखने का, कोई हम सब नफस तो नहीं, मशीन उस्ताद हो सकती है पर बिस्मिल
0: बहुत
1: कहाँ होगा।
0: सुंदर पूनम, तुम्हारी बात में कड़ी में मैं जोड़ते हुए कहती हूँ,
1: हाँ जी,
0: पंकज नाम के कवि ने भी बहुत सुंदर लिखा है इसी पर कि चाहे जितनी क्षमता भर दो तुम उनके कल पुर्जों में, मगर मशीनें इंसानों की जगह नहीं ले सकती हैं। ज्ञान भरा जिज्ञासा की प्यास कहाँ से लाओगे, रंग बदलती कुदरत का आभास कहाँ से लाओगे। शब्द अर्थ बन बुद्धि विद्या, सोच समझ तो कर देगी मगर मशीनों के भीतर एहसास कहाँ से लाओगे,
1: एहसास कहाँ से
0: एहसास कहाँ
1: बदलेगी।
0: से लाओगे।
1: बहुत अच्छी बात है
0: बहुत
1: कि
0: अच्छा।
1: मशीन एहसास नहीं
0: हाँ
1: है,
0: जी, हाँ
1: मशीन बौद्धिकता का है, ये
0: जी
1: बात है।
0: जी
1: मशीन तकनीकी एक विज्ञान है
0: हाँ जी
1: और मशीन के माध्यम से हम भाव नहीं
0: जी
1: ले
0: हाँ
1: सकते,
0: जी
1: तो
0: हाँ जी,
1: साहित्य में भाव
0: तो
1: विलुप्त
0: मुख्य
1: होंगे,
0: हैं, मुख्य हैं जी।
1: मुख्य हैं।
0: हाँ जी,
1: इसीलिए क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो, उसका हमें समाज के हित के लिए उसका प्रयोग करना है, समाज संस्कृति को बचाने के लिए उसका प्रयोग करना है, साहित्य को, दर्शन को, आध्यात्मिकता को बचाने के लिए उसका प्रयोग करना है,
0: बिल्कुल
1: उस पर
0: सर,
1: अपना उसको हावी अपने
0: नहीं
1: ऊपर नहीं होने
0: होने देना
1: देना,
0: चाहिए।
1: क्योंकि क्योंकि हमने उसको बनाया है, उसने
0: उसने
1: हमें
0: हमें नहीं
1: नहीं
0: बनाया
1: बनाया है,
0: है।
1: तो
0: यही वजह
1: इसलिए
0: है कि यदि सोच समझ कर इसे अपनाया जाए तो हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य नई ऊंचाइयों को
1: हाँ जी
0: छू
1: हाँ जी
0: सकता है, क्योंकि हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा है और आधुनिक तकनीक का
1: हाँ
0: संतुलित समन्वय ही इसका
1: दोनों
0: भविष्य का
1: में,
0: मार्ग जो है वो प्रशस्त करेगा।
1: हाँ
0: दो
1: बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि साहित्य को, भाषा को, योग को, चिकित्सा को, भारतीय संस्कृति को विदेशों तक हिंदी भाषा के माध्यम से पहुंचाने का एक बहुत बड़ा उपकरण के रूप में जो

0: कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो साबित हुई है, प्रमाणित हुई है। तो आप लोगों ने बहुत ही विस्तृत चर्चा की, बहुत ही अच्छी बातें साहित्य के माध्यम से, भाषा के, क्योंकि भाषा को संवारने के माध्यम से, साहित्य को माध्यम से, भाषा को लोगों तक पहुंचाने के माध्यम से आपने बहुत विचार चर्चा की है। आप यहाँ पे आए मैडम पूनम जी और मैडम नील सेठी जी, आपका बहुत बहुत आभार। आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी श्रोता हैं इससे जरूर लाभान्वित होंगे और साहित्य में रुचि दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कृत्रिम बुद्धिमता एवं हिंदी साहित्य, इस विषय पर आप एक परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे प्रोफेसर सोमनाथ शर्मा, डॉक्टर पूनम महाजन एवं डॉक्टर नीलम सेठी। इसी के साथ परिमल का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सोहन कुमार। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से सुन रहे थे।

गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साकाओ, तू ठाकुर ऊच पगवाना। इस विच कोई अतकतनी नहीं कि अकाल पुरख दी महिमा बयान ही नहीं कीती जा सकती, उस दे गुण गायन नहीं कीते जा सकते। पर फिर भी मन विच ए लोचा हुंदी है, गाये गुण गोपाल कृपा निध, दुख बिदारन सुख दाते सतगुर, जाको पेटत होए सगल सिद्ध। सरवण करदे आ भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

ए गुण गोपाल कृपा निध, दुख बिदारन सुख दाते सतगुर, जाकौ पेटत होए सगल निध। इस शब्द गायन कीता सी पाई बख्शीश सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। ओ परमात्मा सर

गला सम्रथ है, सब जियादा दाता है, दीना ते दया करन वाला है, सारे जियादा रिजक दाता है, ताते फिर दिन रात उसे दे ही गुण गायन करने बढ़ते ने, रैण दिनस प्रभात तू है ही गावना, जीय जंत सरबत नाओ तेरा त्यावना। सरवण करदे आं भाई जगीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों इस पौड़ी दा गायन।

0: रैण दिनस प्रभात तू है ही गावणा। इस पौड़ी का गायन किया सी भाई जगीर सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस पौड़ी की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी दिलबाग सिंह।
1: पौड़ी रैण दिनस प्रभात तू है ही गावणा, जी जंत सरबत नाउ तेरा त्यावणा, तू दाता दातार तेरा दिता खावना, भगत जना कै संग पाप गवावना, जन नानक सद बलिहारै बल बल जावना। ए पावन पौड़ी धन गुरु रामदास जी दे पावन मुखारबिन तो उचारण कीती हुई है। अति राग सोठ वार महले चौथे की सरलेख हेठ बाणी विच पौड़ी दे रूप विच दर्ज है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 652 ते सुशोभित है। गुरबाणी दे शब्द दा केंद्री भाव रहाओ दियां पंक्तियां विच हुंदा है, पर जिस शब्द विच रहाओ दियां पंक्तियां नहीं हुंदियां उस शब्द दियां पहलियां पंक्तियां विच शब्द दा केंद्री भाव मन्निया जांदा है। गुरु ग्रंथ साहिब विच 22 वारां दर्ज हन। वारां विच श्लोक ते पौड़ियां दर्ज हन। केंद्री भाव पौड़ी विच हुंदा है। विचार अधीन शब्द रूपी पौड़ी दियां पहलियां पंक्तियां हन। रैण दिनस प्रभात तू है ही गावणा, अकाल पुरख सर्ब कला समर्थ है, सब जीवां नूं पैदा करन वाला है, सब गुणां दा मालक है, ऐसे प्रभु दी सिफत सलाह करनी चाहीदी है। परमात्मा दे प्यारे अमृत वेले दिन रात परमात्मा दी सिफत सलाह करदे हन। धन गुरु नानक साहिब जी दा पावन बचन है, नानक भगतां भुख सलाहन सच नाम आधार। भगत नाम देव जी राग भैरू विच बख्शिश करदे हन। जिवें भुखे मनुख नूं अन्न प्यारा लगदा है, प्यासे मनुख नूं पाणी चंगा लगदा है, माया विच गलतान मनुख नूं अपना ही परिवार चंगा लगदा है, लोभी मनुख नूं धन चंगा लगदा है, इवें अकाल पुरख दे प्यारियां नूं दिन रात उसकी सिफत सलाह करनी चंगी लगदी है। भगत नामदेव जी बख्शिश करदे हन, जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखावंत जल सेती काज, जैसी मूड कुटुंब परायण, ऐसी नामे प्रीत नारायण। शब्द की अगली पंक्ति है, जी जंत सरबत नाउ तेरा त्यावणा। सारी सृष्टि दे जीव अकाल पुरख पिता जी दे आप उत्पन्न किए हुए ने। समग्र जीव आप जी दे ही गुण गायन करते हैं, आप जी का ही नाम ध्यांदे ने। परमात्मा दे प्यारियां नू सारे जीव उस करते दी सिफत सलाह करते नज़र आउंदे हन। श्लोक वारां ते वधीक विच गुरु अमरदास जी बख्शिश करते हैं, हर हट पी तू तू करै बोलै भली बाण। गुरु नानक साहिब जी सोदर दे सरलेख हेठ बख्शिश करते हैं कि करते दी साजी हुई सारी कायनात उसकी सिफत सलाह कर रही है। सोदर तेरा केहा सो कर केहा, जित बह सर्ब संभाले, वाजे तेरे नाद अनेक असंखा, केते तेरे वावन हारे, केते तेरे राग परी सो कहियै, केते तेरे गावन हारे, गावन तुदनो पवन पाणी बै संतर, गावै राजा धर्म द्वारे, गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारे, गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सवारे, गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे, देवत्यां दरनाले, गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो

दिन पी गावो रैनी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विसास हुए हर जीवत मर्त संगारी। आप जी सरवण कर रहे सो भाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया ए शब्द।

दिन पी गावो रैनी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विसास हुए हर जीवत मर्त संगारी। आप जी सरवण कर रहे सो भाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% LPG कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, CNG आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित PM मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडिबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलगु वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की।

नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में 1 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़।
1: ओ दीदी, बैंक का नंबर चाहिए था, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, हुने फोन कर दें दीदी।
0: बिना नंबर दी जांच कित्ते? अक्सर धोखेबाज जाली बैंक वैबसाइटां ते जाली नंबरां नाल पैसे ठगदे हन।
1: तां फिर सही नंबर
0: बैंक दी अधिकारिक वैबसाइट जां ते कार्ड ते।
1: तुसी दा बचा लिया दीदी।
0: काम तो नहीं
1: कर रहे हैं जी।
2: आरबीआई कहंदा है
3: सही वित्तीय रवैया तुहानू बचाएगा हमेशा।
4: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਮੂਹ ਗਾਨ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6:20 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजय, कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
4: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जा लीज ते दिते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दिते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर के उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया लड़ीवार नाटक।

0: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारका फेरते, पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल तां नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
1: 8:45 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ। 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9,

0: 9 बजे नेशनल प्रोग्राम होएगा, 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, 11 बजे समाचार हिंदी, 11:05 समाचार अंग्रेजी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
2: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में

0: जाना जाता है। लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म, भक्ति, देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।

0: विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की दो दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरीकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉ जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की दो दिवसीय यात्रा सम्पन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर

0: किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9।

0: किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: Mr. Modi said today India is advancing on reforms express and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that center will continue to work with greater speed to realize your dreams.
2: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
1: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. It is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super speciality quaternary care not-for-profit institution in Hyderabad. Later, Prime Minister Narendra Modi addressed a public meeting in Hyderabad this evening. Mr. Modi said the people of Telangana are seeking change after being let down by both the BRS and the Congress. He said only the BJP's double-engine government can fulfill public aspirations and ensure development. He added that the BJP has formed government in West Bengal with a strong mandate and expressed confidence that similar support is emerging in Telangana.
3: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। यहां बीजेपी का हर

0: सेवा परमो धर्म है, ये हमारे समाज का स्वाभाविक चरित्र है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार सरिता हम सबको संस्कारित करती है, प्रेरित करती है, ऊर्जावान बनाती है।
1: The Prime Minister noted that India's growth, particularly in the fields of technology, innovation and startups, is driven by its youth. He stressed the importance of helping youth find mental peace, staying connected with to their roots and develop a sense of social responsibility.
0: आज की दुनिया में बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हर दिन साइंस नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है, नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है। हमारी डिजिटल क्रांति ने भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारी युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट्स भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है।
1: The Prime Minister also called for collective efforts in natural farming, water conservation and environmental stewardship. He linked these efforts to the government's broader Mission Life initiative, which promotes a lifestyle in balance with nature.
0: भारत के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कई स्तरों पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इनमें आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका और ज्यादा शक्ति से इस परिवर्तन के प्रहरी बन सकते हैं। आप में से बहुत से लोग किसानों और ग्रामीण समुदायों के साथ जुड़कर काम करते हैं।
1: The Prime Minister in recent years has repeatedly linked wellness and preventative healthcare with national productivity, mental health and lifestyle management. Officials say institutions promoting meditation, yoga and stress management are now being viewed as complementary to formal healthcare systems. Bengaluru itself has become an important center for this wellness ecosystem, blending technology, education and spiritual tourism. Over the past several years, India's healthcare strategy has increasingly focused on strengthening district hospitals, expanding medical education, and improving access to affordable treatment through schemes such as Ayushman Bharat. Telangana has emerged as one of India's healthcare and pharmaceutical hubs, attracting patients not only from neighboring states but also from abroad. The Prime Minister laid the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 between Gudebellur and Mehboob Nagar. The highway forms part of the larger Hyderabad-Panaji economic corridor and is expected to improve connectivity between Telangana, Karnataka and Goa. Road infrastructure has been one of the central themes of India's developmental push over the past decade. Under programs such as Bharatmala and PM Gati Shakti, the government has sought to integrate highways, ports, rail corridors, logistics parks and industrial clusters into a unified transport network. The Prime Minister noted that over the past 12 years, the government has invested nearly 1.75 lakh crores in national highways, doubling the network in Telangana. Let's listen to what he said.
0: बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता आधुनिक कनेक्टिविटी भी रही है। रोड्स हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के हर मोड़ पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पर की गई है और इसका बहुत बड़ा लाभ तेलंगाना को भी हो रहा है।
1: The Prime Minister also highlighted the development of the Zahirabad industrial area as part of the national initiative to build industrial corridors, aiming to transform the region into a manufacturing powerhouse with world-class infrastructure and advanced ICT networks. Let's listen to what he said.
0: जहीराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार

0: सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है। ये एक प्रकार से इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतरीन पावर सप्लाई होगी, एडवांस आईसीटी नेटवर्क होगा, यानी दुनिया भर के निवेशकों के लिए यहाँ हर वो सुविधा होगी जो इंडस्ट्री के लिए उन्हें जरूरी है।
1: Another major announcement during the Hyderabad program was the foundation stone for the Zahirabad industrial area in Sangareddy district. The Zahirabad industrial area will include plug and play facilities, logistics support and infrastructure for export oriented industries. Telangana has steadily positioned itself as an investment destination in sectors such as electronics, pharmaceuticals, defense, manufacturing and data services. Industry representatives believe the corridor could further strengthen Hyderabad's role as a logistics and manufacturing hub in southern India. The Prime Minister also discussed the importance of energy for 21st century progress, mentioning the inauguration of the Indian Oil Terminal in Malkapur as a step to strengthen supply chains. He also advocated for the restrained and efficient use of energy resources such as petrol and gas to reduce reliance on imports. Let's listen to what he said.
0: Hamari Kendra Sarkar abhutpurva nivesh kar rahi Malkapur mein इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। यह टर्मिनल तेलंगाना की बढ़ती एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा, सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। साथियों, बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: The final major project of the day focused on one of India's oldest employment sectors, textiles. The Prime Minister also inaugurated the PM Mitra Textile Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. PM Mitra or the Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel Scheme is part of government's effort to modernize India's textile sector and improve export competitiveness. Telangana has a long history of cotton cultivation, weaving traditions and textile activity. The Warangal project aims to connect this traditional strength with modern industrial infrastructure and global supply chains. Let's listen to what the Prime Minister said about this.
0: Warangal ka PM Mitra Park desh mein textile kranti ko gati dega. PM Mitra Park mein lagne wali units ko केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा, उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी। यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा, खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले।
1: अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स, Each PM Mitra Park could attract investments worth nearly 10,000 crore rupees while generating large-scale employment opportunities. Prime Minister Narendra Modi's visit to Karnataka and Telangana brought together several themes that have come to define India's current development narrative: infrastructure expansion, industrial growth, healthcare access, logistics, integration and cultural outreach. As these projects move from announcement to execution, their long-term impact will ultimately be measured by jobs created, services delivered, and regional growth achieved. The Prime Minister's visit to Karnataka and Telangana was characterized by a blend of economic planning and public engagement. These initiatives will work as long-term investments in connectivity, employment and manufacturing capacity and lead towards the goal of a Viksit Bharat by 2047. Listeners, you can also listen to this program on our mobile app News on AIR or our YouTube channel News on AIR Official. This was it for Spotlight today.

0: Manoj Mainkar. Produced by Nitish Arora for the Central English Features Unit. This broadcast came to you from Akashvani Delhi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।
2: आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
3: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। We bring you a Veena recital by Vidwan D. Srinivas. Accompanying him on Mridangam is Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam, Shri M. Chandrakant.
2: Vidwan D. Srinivas Telangana ke ek agrani Karnatak sangeetkar hain. Ek sangeet parampara wale parivar mein janme, Srinivas ne 7 saal ki umr mein apni maa Shrimati D.L. Tulsi ke maar

0: Hospital by Vidwan D. Srinivas. Accompanying him on Mridangam is Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam, Sri M. Chandrakant.
1: Vidwan D. Srinivas Telangana ke ek agrini Karnatak sangeetkar hain. Ek sangeet parampara wale parivar mein janme, श्रीनिवास ने 7 साल की उम्र में अपनी माँ श्रीमती डीएल तुलसी के मार्गदर्शन में वीणा शिक्षा का श्री गणेश किया। 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादी विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
0: विद्वान डी श्रीनिवास ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन from Telangana was born into a musical lineage. He began the art of Veena at the age of 7 under the guidance of his mother Srimati D. L. Tulasi. By the age of 9, he was a child prodigy. The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade Veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. Imani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar-style plucking pushed the boundaries of Veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
1: आज रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पीहोली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
0: In tonight's broadcast, Vidwan D. Srinivas is accompanied on mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant.
1: Vidwan D. Srinivas ne apne veena vadan ki shuruaat Raag Gola mein Mysore Vasudevachar ki ek rachna se kar rahe hain jo Adi Taal mein nibadh hai.
0: Vidwan D. Srinivas begins his veena recital with a composition of Mysore Vasudevachar in the Raag Gola set to Adi Taal.

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ रामस्वामी शिवन इन द राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल।

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदिताल त्रिस्र गति।

0: इसके साथ ही आज की रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पीहोली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. He was accompanied on Mridangam by Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Shri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.6।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में

0: स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना

निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एम के स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जवाब नी, माँ जवानी है तेरा भी जवाब नी। दोस्तों इस प्रोग्राम च शामिल होकर तुसी भी बन सकते हो सौगात का हिस्सा ते सुन सकते हो अपनी फरमाइश का गीत ते फिलहाल उस दोस्त की फरमाइश पूरी करते हैं जेड़े जुड़न जा रहे हैं साढ़े नाल यानी AIR दे नाल। हैलो
1: हैलो नमस्कार अश्विनी जी।
0: नमस्कार जी ते अपने बारे दस दियो जी कौन ते कित्थों जी।
1: श्री गुरु रविदास नगर मोड़ तो फकीर चंद रसगणिया जी।
0: होर सुनाओ जी फकीर चंद जी की हाल चाल है ते गीत केड़ा प्ले करिए तुहाडे लई।
1: बहुत वधिया हर भजन पान दा गीत कर दो मां ठंडी चढ़ना अज मदर
0: फोन करने लई शुक्रिया जी। मदरस डे दियां सारियां नूं बहुत बहुत मुबारकां ते उन्हां मावां नूं खास तौर ते जिहड़े बहुत तरीके नाल अपने बच्चों ना सिर्फ संभाल दिया ने सगों दुनियादारी कबीलदारी ते होर भी सारे काम अपने मोढ़ियां ते चक्की फिर दिया ने इहो जिहियां मावां नूं सलाम ते कुछ स्नेह भी शामिल करते हैं जी। पिंड कैरों जिला तरन तारण पंजाब तो गुरदर्शन लाल चलोत्रा सुनीता चलोत्रा रजनी आकाशदीप अनहद ते इन्हां दा पोतरा गुरशबद चाहल कला नवा शहर तो परमजीत बंगा परमिंदर राजा कुलविंदर कौर ते अंबा चाहल गीत की फरमाइश हर भजन मान दे गाए इस गीत की।

0: हेलो।
1: हेलो सत
0: हाँ जी नमस्कार जनाब।
1: श्रीकाल। मैं संतोष कुमार यादव और मैं केरल से बोल रहा हूँ सर।
0: गीत कौन सा सुनाए जी?
1: सर गीत आप सुना दो, थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए, दुख होवे दसना जरूर चाहिए।
0: फोन करने लिए शुक्रिया जी। गीत इन्हें फरमाइश का जरूर प्ले कराएंगे, कुछ स्नेह भी शामिल कर दें जी। पिंड नथाना जिला बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा जसवीर रेखा गगन सोनी सीता और गीता। पिंड कुबाया तहसील जलालाबाद जिला फाजिलका तो पप्पू मुनीम अमरबाई राजू फौजी हरप्रीत कौर बलजीत कौर हरमेश सिंह गुर निरवैर प्रनीत कौर मनदीप बबलू ते

अगला गीत सुनेहे तो प्ले कर दें जी, मसीता डब वाली तो दर्शन लोड, सरगुन इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर ते हनी लोड, पिंड आजम वाला तहसील फाजिलका तो सोन सिंह बूक निशान सिंह बूक सीरत कौर कीरत कौर अमर लाल ते इन्हां दी दादी जसवंत कौर दे नाल नाल सुरिंदर कौर बलविंदर कौर बलदेव सिंह चक कदे शाह नेड़े टिड्डी रोड फिरोजपुर तों। गीत अगला हरभजन मान ते जसपिंदर नूरूला दी आवाज़ च लौंग गवाईयां।

0: हेलो
1: हेलो,
0: सत श्री अकाल सर जी।
1: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दियो जी, कौन ते कित्थों
0: सर
1: जी?
0: जी मैं राजू बोल रहा जी, चंडीगढ़ तो।
1: होर सुनाओ राजू जी, किहो जिहा बीते अज दा दिन?
0: बहुत वधिया बीतिया सर जी।
1: कुछ खास जिहड़ा अज दा दिन याद रहे कि हां बई?
0: बस जी कम कार च बिजी रहे सर जी, फिर किसे घर चले गए सेवा च।
1: बहुत वधिया जी, ते फरमाइश भी दस दियो जी। ਅੱਜ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਲਾਹੌਰੀਆ। ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।

0: हेलो, धन्यवाद
1: हाँ जी, स्वागत है जी प्रोग्राम च।
0: जी।
1: ते अपने बारे दस दो जी, ते अपनी फरमाइश बारे भी।
0: मां दी दुआ कदे खाई जांदी ते मां दी बद दुआ भी टाली नहीं जांदी। भांडे मांज के चार पांच पुत्र पाल लेंदी, पर एक मां चार पांच पुत्रा तो संभाली नहीं जांदी। सुखदेव सिंह बस्ती शेर जनक नगर जलंधर वालों सारे चुनवले सुनियो प्यार भरी सत श्री अकाल जी। बब्बू
1: ते गीत दी फरमाइश भी दस दियो जी।
0: मान का गीत सुना रहे हो जी, साडा की ये आपां तां दिन कट्टी जाने।
1: फोन करने लिए शुक्रिया जी। तुहाड़ी फरमाइश का गीत जरूर सुनने हैं जी। सुनेहे भी शामिल करते हैं जी। बागा बुराना तो सतनाम सिंह रखड़ा, अमरजीत कौर रखड़ा, तेग फतेह सिंह ते इन्हों का पूरा रखड़ा परिवार, मुलापुर दाखा मंडी तो बिट्टू जैन, राजेश मट्टू, अरुणा बिट्टी, अभिषेक, गौतम, दीपक, संजय, नीलू ते इंदू जैन, इन्हां सारे दोस्तों की मिली जुली फरमाइश बब्बू मान की आवाज़।

0: हेलो।
1: हेलो अश्विनी भाई, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जनाब। ते अपने बारे दस दो जी, कौन ते कित्थों जी? ते
1: अश्विनी
0: गीत केड़ा प्ले करिए तुहाडे लई?
1: भाई
0: सरबजीत दी आवाज़ च कोका जी।
1: ठीक है जी, ओके जी, बाय।

प्रोग्राम दी अगली पेशकश मलूर तो कुलवंत गिल जसवंत गिल रमन गिल जिला मुक्तसर पिंड मोहला तो पाल गिल गुरदयाल गिल साधु गिल दीशा मोहला दर्शन बराड़ ते मलकीत गुड़ियाना ताज मुहम्मद अंसारी गुलाम साबी राही ते मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड तो अगला गीत सतविंदर बुग्गे की आवाज़ से याद करके।

तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम, पालह अकिर्त कना पूरन दृष्ट तेरी राम। ओ परमात्मा वड्डी ताकत वाला है, इन्ना बुलंद कि असी दुनियावी प्राणियां दी निक्की जिन्नी अकल उस परमेश्वर दे वड़प्पण नू समझ ही नहीं सकती। अकाल पुरख प्रभु दी सिफ तो सलाह बेअंत है, उस दी उपमा दे लई शब्द ही नहीं बने। इतां इसे तरह है जिस तरह राग बिलावल विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी फरमाउंदे ने, तू सुल्तान कहा हो मिया तेरी कवन वडाई, जो तू देह सो कहा स्वामी मैं मूरख कहण न जाई। सरवण करदे आ भाई मनजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए

0: तू सुल्तान कहा हो मिया, तेरी कवन वडाई, जो तू देह सो कहा स्वामी, मैं मूरख कहन न जाई। इस शब्द का गायन कीता सी भाई मनजीत सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी बहु उपदेशात्मक है। बाणी विच एक आदर्शक शख्सियत उसारी लई सुचजी जीवन जुगत उपलब्ध है, जो वड्डे भागा नाल प्राप्त हुंदी है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विचली बाणी दे बाणीकारा ने शब्दां दी परिभाषा बयान कीती है, सिर्फ कोशागत अर्थ ही बयान नहीं कीते। जिवें सो मुला जो मन स्यों लरै, जा फिर काजी सो जो काया बिचार है, ते जा फिर सो सुरतान जो दुए सरतान है। भगत कबीर जी अपनी रचना विच फरमाउंदे ने कि मुल्ला केवल ओ है जो अपने मन नाल जूझदा है, इथों तक कि गुर उपदेश नूं ग्रहण करके काल नाल भी जूझण दी समर्था रखदा है, ओ जमा नूं भी शिकस्त दिंदा है। ऐसे मुल्ला नूं सदा सलाम है। सुनदे हां प्रिंसिपल कृष्ण सिंह होरां पासों वार्ता, सो मुल्ला जो मन स्यों लरै।
1: श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच 6 गुरु साहिबान, 15 भगतां, 11 पट्टां ते गुरसिखां समेत 31 प्रमुख रागां ते आधारित बाणीकारां दी बाणी है। विचार अधीन बाणी तुक भगत कबीर जी वलों उचारण कीती हुई है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकित राग भैरों विच 1159-60 अंग ते सुभाईमान है। भगत कबीर जी का जन्म बनारस विखे 15वीं सदी विच पिता नीरू जी ते माता नीमा जी दे जुलाहा परिवार विच होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लिखित पाठ का मूल स्रोत ते इस दी धर्म मूल धर्म चेतना की है दा बोध तुरकी बाणी आई, जैसी में आवै खसम की बाणी, तैसला करी ज्ञान वे लालो, हो आपो बोल ना जानदा, मैं कहया सब हुकमाओ जियो, आदि तुकां तों भली भांत प्रतख हो जाता है। बाणी अवेश वजों इस बाणी का यह निवेकला ते न्यारापण है। समुचे बाणी अध्ययन ते इस दी अंदरूनी गवाही तो यह भी स्पष्ट है कि यह तुरकी बाणी प्रचलित काव्य परंपरा तो मुक्त होकर समय की हाणी एक नवी काव्य परंपरा का मुढ़ बनती है। बाणीकारां दीआं कुछ बाणी सत्रां तो भी प्रतक हुंदा है कि रब्बी अनुभव वजों यह बाणी विछोड़े का अहसास ही नहीं, जां इह किसे भी साधक की समाधि की अवस्था तक सीमित नहीं, सगों ब्रह्म विचार अथवा विज्ञानक पहुँच विधि तहत प्रभु जग्यासुआं नूं यह मनुखी जीवन की विशेष विवेकी बिरती नाल भी जोड़ती है। गुरु नानक साहब ते कबीर साहब दे इन्हां बाणी बोलां तों भी प्रतक है, गावहो गीत ना बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो, लोग जाने यह गीत है, यह तो ब्रह्म विचार। सिखी चेतना वाले अजिहे लिखित पाठ की यह भी विशेष प्रमाणिकता ही है, जो तत्कालीन जां समकाली धर्मां तों इस दे सिधांतक नखेड़ की मूल आधारशिला भी बनती है, ते इस दे नाल नाल गुरु नानक साहब तों 10वें पिता गुरु गोबिंद सिंह जी तक की 239 वरियां की विशेष घालना सदका सब सिखों को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ अते प्रगट गुरां की देह का रुतबा भी हासिल करती है। गुरमत दर्शन की यह सिद्धांतक समझ का ही नतीजा सी कि कौमांतरी पद्धर दीआं ज्ञान प्रणालियां नवीन आलोचना विधियां जदों भी इसकी सही प्रसंगक व्याख्या नाल जुड़ियां उसके सिट्टे वजों केवल धर्म जग तक ही नहीं सगों देशों विदेशों के अकादमिक खेत्रां विच भी इसका दायरा होर भी वसी होया। उत्तराधुनिकता के संदर्भ विच तां गुरु अमरदास जी दीआं कुछ बाणी सत्रां नूं गुरु नानक नाम लेवा सिखां बुद्धिजीवियां विद्वान चिंतकां वलों हमेशा

दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा। आप जी सरवण कर रहे सो भाई कमलजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

सुनी रैत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दुदे लगे तिनके गुनों क्या कहो गुरुदेव मिलायो पिखिया जीव तू रखे देव रहो जीव तू रखे देव रहो।

लाटं द्वय तोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट नेचो कर्मं कहो नानक नेचो त्यावे बिन सतगुरु बाट न पावे पौड़ी।